0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এতিয়া ছয় বজাৰ পৰা ক্ৰমে হিন্দী আৰু ইংৰাজীত বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই মুকেশ কুমাৰ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोस्का दावुका के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टियन मिकोस्की, असेंबली के स्पीकर अफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी और उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केस से मुलाकात की। बैठक में डॉ जयशंकर ने लैटिन अमरीका और कैरेबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार, कारोबार, विकास, समुद्री मामलों, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। इससे पहले विदेश मंत्री ने भरोसा जताया कि पनामा के विदेश मंत्री

0: की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और पनामा आपसी साझेदारी प्रगाढ़ करने के लिए उत्सुक हैं। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां प्राप्त की हैं।
1: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 118 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने वालों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया, पुलिस और दूसरी सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। पुलिस ने कहा कि झड़प के दौरान करीब 60 प्रदर्शनकारियों के भी घायल होने की खबर है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में कल प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधि मंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य बनाने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या राम मंदिर के दान में कथित हेराफेरी की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने की संभावना के बारे में जानकारी मांगी है। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर आज सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार मंडी जिले की 11 और चंबा जिले की 10 सड़कों सहित कुल 36 सड़कें बंद हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, कर्नाटक, तेलंगाना, विदर्भ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बिजली गरजने और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की आशंका व्यक्त की है। इस बीच दिल्ली में हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई है। पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुडा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और HS प्रणॉय टीम का हिस्सा हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: इसी मुसीबत कहते हो छोटे भैया?
1: ये तुझे कहां से मिली?
0: आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया। रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। मैंने आज तुम्हारी रक्षा की, ये कभी न भूलना।

0: गिर गया हाथ से, गिर गया या जानबूझ के गिरा दिया? झूठ क्यों बोलती हो भाभी?
1: मीना, भाभी को झूठा कह रही हो? बेशर्म,
2: मेरे पास वक्त नहीं है बातों के लिए, मैं जा रहा हूँ।
3: नहीं भैया, ये तो बहन की प्रार्थना है। बहन हो और भाई राखी न बंधवाए तो बड़ा अभिशगन होता है भैया।
2: होता है तो होने दो।

0: कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: तीन राष्ट्रों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू स्कोपिये में मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टिजन मिकोस्की और असेंबली के स्पीकर आफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू का उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज से मुलाकात की। बैठक में डॉ. जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया।
2: पनामा वैश्विक व्यापार मार्गों के लिए एक प्राकृतिक सेतु और व्यापक लैटिन अमेरिकी क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। पनामा नहर के कारण यहाँ की लॉजिस्टिक अवसंरचना विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण पहचान रखती है। हम शिक्षा, छात्रवृत्ति, औषधि उद्योग, प्रौद्योगिकी और सबसे महत्वपूर्ण व्यापार सहित अनेक क्षेत्रों में आपके सहयोग और साझेदारी की रुचि की सराहना करते हैं। हमें विश्वास है कि इन क्षेत्रों में मिलकर कार्य करने से दोनों देशों के बीच आर्थिक, शैक्षिक और तकनीकी संबंध और अधिक सुदृढ़ होंगे।
1: श्री जयशंकर ने बेल्जियम के राष्ट्रीय दिवस पर वहां के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रिवोट तथा देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत बेल्जियम के साथ अपनी बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने यूक्रेन के ओडिशा बंदरगाह से रवाना हो रहे जहाज एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 1 भारतीय गंभीर रूप से घायल है। मंत्रालय के अनुसार घटना के समय जहाज पर 17 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें 5 भारतीय नागरिक शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली मासिक आर्थिक सहायता को 1000 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए करने की मंजूरी दी है। कल जारी एक आदेश में सरकार ने कहा कि बढ़ी हुई राशि सभी पात्र लाभार्थियों को मौजूदा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी। निर्वाचन आयोग आज कोलकाता में डाक मतपत्र प्रणाली को अधिक समावेशी, सुरक्षित और सुलभ बनाने पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के सभी 24 चुनावी जिलों के चुनाव अधिकारी, साथ ही भारत और कई अन्य देशों के चुनाव प्रशासक, नीति निर्माता, शिक्षाविद और चुनाव विशेषज्ञ शामिल होंगे। चर्चा का मुख्य विषय पोस्टल बैलेट और विशेष मतदान व्यवस्थाओं को ज्यादा समावेशी, सुलभ और सुरक्षित बनाने के तरीकों पर होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्य चुनाव अधिकारी नीलम मीना इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। कार्यक्रम में पोस्टल बैलेट, चुनावी निष्पक्षता बनाए रखने, धोखा धड़ी रोकना, ऑडिट सिस्टम, कानूनी ढांचे, टेक्नोलॉजी पर आधारित विशेष वोटिंग सिस्टम और रिमोट वोटिंग के भविष्य जैसे विषयों पर सत्र होंगे। अंतर्राष्ट्रीय सत्र के दौरान नेपाल, अल्बानिया, बोस्निया और हर्जेगोविना और अन्य देशों के चुनाव विशेषज्ञ वर्चुअली अपने अनुभव साझा करेंगे। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून सक्रिय है और कई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय मौसम विभाग ने आज राज्य के 5 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
3: हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार हो रही मानसूनी वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भूस्खलन के कारण अनेक संपर्क सड़कें अवरुद्ध हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में बिजली और पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। प्रभावित इलाकों में बहाली का कार्य जारी है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज कांगड़ा, मंडी, चंबा, सिरमौर और कुल्लू जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एहतियात के तौर पर कांगड़ा, मंडी, चंबा और सिरमौर जिलों में सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों को आज लगातार दूसरे दिन भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अनावश्यक यात्रा से बचने तथा नदियों, नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: उधर जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी नई घटनाओं में एक महिला और उसके 2 बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हो गई है। इससे पिछले 3 दिनों में मरने वालों की संख्या 23 हो गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी दिन के दौरान मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। सिक्किम के नामची जिले के समरडुंग में NHPC जल विद्युत परियोजना की बन रही सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए तलाश और बचाव अभियान जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: ये घटना कल दोपहर दक्षिण सिक्किम के सामरडुंग में NHPC प्रोजेक्ट पर घटी। NDRF, SDRF और दूसरी एजेंसियों को तुरंत ही बचाव कार्यों में लगाया गया है, लेकिन गैस लीक होने के कारण बचाव दल शुरुआत में घटनास्थल तक नहीं पहुंच पाए थे। हालांकि सभी की कोशिशों से अब तक 8 शव बरामद किए जा चुके हैं। माना जा रहा है कि भूस्खलन के कारण बन रही सुरंग को नुकसान पहुंचा है, लेकिन असली वजह अब तक नहीं पता चल पाया है। व्हाट्सएप दल फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिनमें मजदूर, एनएसपीसी के अधिकारी और एक प्राइवेट इंजीनियरिंग फर्म के कर्मचारी शामिल है। मानसपतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंडी बर्नहम को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा लोकतांत्रिक मूल्यों से बंधे हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों में व्यापक सहयोग है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाल ही में जॉर्डन में दो अमेरिकी सैनिकों और इराक में एक सैनिक के मारे जाने के बाद उनकी ये चेतावनी आई है। इस बीच अमेरिकी सेना ने आज ईरान के खिलाफ नए हमलों की शुरुआत की है। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस सैन्य क्षमताओं को और कमजोर करना है, जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले के लिए किया जाता है। इससे पहले ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि उसने ईरानी प्रांतों पर अमरीकी हमलों के जवाब में मिसाइल और ड्रोन हमलों के तीन दौर के जरिए बहरीन और कुवैत में अमरीकी संपत्तियों और ठिकानों पर तेज प्रहार किए हैं। चाइना ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से शुरू हो रही है। प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व पीवी सिंधु करेंगी। महिला सिंगल्स के पहले दौर में सिंधु का सामना उन्नति हुडा से होगा। देविका सिहाग भी महिला सिंगल्स में खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में भारत की ओर से लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एचएस प्रणॉय चुनौती पेश करेंगे। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन अंश करुणन भारत के खिलाड़ी हैं। वहीं ओलंपियन तनिषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला, रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे मिक्स्ड डबल्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। महिला डबल्स में भारत की कोई भी खिलाड़ी नहीं है। और हॉकी में FIH यूथ 5S एशियाई चैंपियनशिप में भारत की पुरुष और महिला सब जूनियर टीमों ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। ओमान के मस्कत में खेले गए मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने कजाकिस्तान को 8-3 से हराया। भारतीय पुरुष टीम ने अपने पहले मैच में बांग्लादेश

0: देश को 7-3 से शिकस्त दी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: राजधानी दिल्ली से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। अमर उजाला ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अपने मुख्य पृष्ठ पर लिखा है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर राजनीति ना हो, एसआईटी के पुनर्गठन की संभावना तलाशें। हिंदुस्तान ने इसी खबर पर सुर्खी दी है, चढ़ावा चोरी की जांच नई एसआईटी करे। दिल्ली में कल हुए प्रदर्शन को भी अधिकतर अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स लिखता है, संसद मार्च में झड़प, सरकार से बात, आंदोलन जारी। राजस्थान पत्रिका ने केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और सीजेपी प्रतिनिधियों की मुलाकात का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, सरकार से आश्वासन के बाद दीपके ने अनशन तोड़ा, 100 प्रदर्शनकारी घायल। अमर उजाला ने संपादकीय में इसी खबर का उल्लेख किया है, संसद के बाहर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनौती का संकेत है, जिसमें संवाद का स्थान धीरे धीरे टकराव लेता जा रहा है। ये निर्विवाद है कि संविधान नागरिकों को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने का अधिकार देता है। लोकतंत्र की मजबूती भी इसी में है कि असहमति को स्थान मिले और सरकारें जन भावनाओं के प्रति संवेदनशील हों, लेकिन ये भी उतना ही आवश्यक है कि प्रदर्शन संविधान और कानून की सीमाओं के भीतर हो। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है, एथेनॉल से कार ही नहीं चलेगी, चूल्हा भी जलेगा। एलपीजी के अलावा एथेनॉल को रसोई ईंधन का विकल्प बनाने की तैयारी, सितंबर तक नीति का मसौदा तैयार कर सकती है सरकार।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपिये में उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ वार्ता करेंगी। यूक्रेन के ओडिशा बंदरगाह के पास एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीयों की मौत, 1 घायल, भारत ने हमले की निंदा की। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों, विधवा और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन बढ़ाई। और पीवी सिंधु आज से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to address NDA Parliamentary Party meeting at Parliament House this morning. President Draupadi Murmu to hold talks with her North Macedonian counterpart in Skopje today. 4 Indians killed and 1 critically injured in attack on commercial vessel near Odessa port in Ukraine. India condemns attack on the ship. West Bengal government hikes monthly pension for senior citizens, widows and specially able persons in the state. US launches fresh strikes on Iran as President Donald Trump warns of massive retaliation. And PV Sindhu to lead India's challenge at the China Open Badminton tournament beginning today. The National Democratic Alliance, NDA Parliamentary Party's weekly strategy meeting, now known as Mangal Milan, will be held in the Parliament House this morning. Prime Minister Narendra Modi is scheduled to address the meeting. The meetings are traditionally held on Tuesdays during Parliament sessions with an intent to demonstrate complete alliance unity. NDA Alliance partners will pass a congratulatory motion during the meeting, honouring Mr. Modi for becoming the longest serving elected Prime Minister of India. President Draupadi Murmu will hold talks with her North Macedonian counterpart Gordana Siljanovska Davkova in Skopje today. President Murmu is also scheduled to meet Prime Minister Hristiyan Miskosti and Speaker of the Assembly Afrim Gashi and address the Parliament. She will also address the India-North Macedonia Business Forum. More from a correspondent.
3: President Murmu arrived in North Macedonia last night on a two-day state visit as part of her three-nation tour to Moldova, North Macedonia and Romania. She is the first Indian president to visit North Macedonia. The visit reflects the importance India attaches to strengthening bilateral ties with the three countries and its engagement with wider Eastern European region. Both sides have shown keen interest in deepening economic ties in priority sectors such as agriculture, pharmaceuticals, science and technology, information technology, and IT-enabled services. North Macedonia is a landlocked country in southeastern Europe. The Indian community in the country is very small, with most members working in

0: की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: বিবিধ ভারতী গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানত ভাগ লবলৈ আপুনি আমালৈ হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব পাৰে। আমাৰ নম্বৰ হৈছে 600-316-6944। পুৱা প্ৰচাৰিত ফোন ইন অনুৰোধৰ গীতৰ অনুষ্ঠান সুৰধ্বনি আৰু সন্ধিয়া প্ৰচাৰিত সান্ধ্য আলাপ অনুষ্ঠানটিলৈ আলোচিত বিষয় সম্পৰ্কত আপোনাৰ মতামত আদি প্ৰেৰণ কৰিবলৈ আপুনি আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰটি আজিয়েই টুকি থওক। আমাৰ নম্বৰ হৈছে 600-316-6944। আপোনাৰ সৈতে আমাৰ যোগাযোগৰ এক নতুন মাধ্যম হৈছে হোৱাটছএপ মেছেজ। আমাৰ নম্বৰ 600-316-6944।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
1: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिलकर के करें।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन मुक्त व्यापार समझौतों के बारे में भी बात की जो भारत ने कई देशों के साथ किए हैं। मंगल मिलन नाम से आयोजित बैठक के दौरान एनडीए के सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री होने पर बधाई प्रस्ताव पारित किया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्ष से सदन चलाने में सहयोग करने का आग्रह किया लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बात की। उन्होंने नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना के बचाव कार्यों के बारे में जानकारी ली। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री तमांग ने बताया कि प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने राज्य के प्रति प्रधानमंत्री के अटूट समर्थन, गहरी चिंता और मजबूत एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त किया। इस बीच सिक्किम में एनएचपीसी तिस्ता पनबिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अब तक 9 शव बरामद किए जा चुके हैं। सुरंग के अंदर करीब 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सिक्किम में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन भारत की पहली डेंगू वैक्सीन चोडेंगा के विपणन की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। ये भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू की रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को पहले ही 42 देशों में स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय आतंकवादी संगठन आईएसआई की भर्ती मामले में बंगलुरु में 8 परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रवर्तन एजेंसी ने कहा कि आरोप पत्र से पता चला है कि आरोपी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन से जुड़े थे और बंगलौर के भोले भाले युवाओं को आईएसआईएस में शामिल होने के लिए प्रेरित कर कट्टरपंथी बना रहे थे। भारतीय शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर के सत्र में 0.3% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स 289 अंक गिरकर 77,420 पर और निफ्टी 72 अंक गिरकर 24,167 पर पहुंच गया। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से शुरू हो गई है। इस समय महिला सिंगल्स के पहले दौर में भारत की देविका सिहाग और पुरुष सिंगल्स में SS प्रणय अपने अपने मुकाबले खेल रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। अभी दिन के 12:10 हुए हैं। सैनिक भाइयों, मैं अमित बांसकोटा आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के प्रसारण में।

सैनिक भाइयों, आपसे कुछ ही पलों में हम प्रारंभ करेंगे आज के सुरीले गीतों का सुहाना सफर। पर उससे पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर।

आपसे कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम 12:30 पर आप सुन पाएंगे आज का गीत। 12:38 पर गीत अपना धुन पर आए। 1:05 पर आप सुन पाएंगे अंग्रेजी में समाचार।

सैनिक भाइयों, 1:10 पर आप सुन पाएंगे एक ही फिल्म के गीत, 1:40 पर शीर्षक संगीत। 2 बजे से आप बारी बारी से सुन पाएंगे अंग्रेजी और हिंदी में समाचार, और 2:30 पर आप सुन पाएंगे आज के प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम गुंजन। और इसी के साथ आज के प्रसारण का समापन होगा दिन के 3 बजे।

सैनिक भाइयों, आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है तड़ीपार फिल्म से। इस गीत को गाया है अलका याग्निक और कुमार सानू ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

सैनिक भाइयों, फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत अभी आपने सुना, तड़ीपार फिल्म से अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में। अब आइए सुनते हैं दिल तो पागल है फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में।

यह आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम एफ 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। सैनिक भाइयों, अब आइए सुनते हैं आज का गीत। आज हमने लिया है लकी फिल्म से ये गीत, अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाजों में।

हमेशा की तरह कल भी हमारे कार्यक्रमों का प्रसारण प्रारंभ होगा दोपहर 12:10 से। 12:12 पर फिल्म संगीत, 12:30 पर आज का गीत, 12:38 पर फिल्मी नगमे, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार। सैनिक भाइयों, 1:10 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम तरंग, 1:40 पर प्रादेशिक संगीत, 2 से आप बारी बारी से सुन पाएंगे अंग्रेजी और हिंदी में समाचार। सैनिक भाइयों, 2:30 पर आप सुन पाएंगे हमारे प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम प्रीत लड़ी। इसी के साथ दोपहर 3 समाप्त होगा हमारा कल का प्रसारण। तो ये थे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। सनी भाइयों, अब आइए सुनते हैं गीत अपना धुन पर आए कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है अराउंड द वर्ल्ड फिल्म से, मुकेश की आवाज़ में। आइए सुनते हैं ये गीत।

अब आइए सुनते हैं बॉम्बे टू गोवा फिल्म से गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

सनी भाई, गीत अपना धुन पर आए कार्यक्रम में। अभी आपने सुना शोले फिल्म से ये गीत आरडी वर्मन की आवाज़ में। अब आइए सुनते हैं शालीमार फिल्म से ये गीत उषा उत्थप की आवाज़ में।

अब आइए सुनते हैं त्रिशूल फिल्म से गीत नितिन मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मेरी एमएफ 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। अब से आप हमारे कार्यक्रम आकाशवाणी के डिब्रूगढ़ केंद्र से भी सुन पाएंगे मेरी एमएफ 529.1 मीटर पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म के गीत। सैनी भाइयों, आज हम सुनेंगे फिल्म बागी से कुछ चुनिंदा गीत और चर्चा करेंगे इस फिल्म के बारे में। सनी भाइयों, इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। समय का चक्र जब पीछे घूमता है तो स्मृतियों के झरोखे से कला और संस्कृति के कई अनमोल रत्न छनकर बाहर आते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं 90 के दशक की शुरुआत में आई एक कालजयी फिल्म की, जिसने न केवल युवा दिलों को उद्वेलित किया बल्कि सिनेमाई कैनवस पर प्रेम और विद्रोह की एक नई परिभाषा रखी। हम बात कर रहे हैं साल 1990 में प्रदर्शित हुई फिल्म बागी की। दिवक शिवदासानी के निर्देशन में बनी यह फिल्म महज एक सिनेमाई प्रस्तुति नहीं थी बल्कि यह उस दौर के युवाओं के अंतर्मन की एक गूंज थी। आइए सुनते हैं इस फिल्म का एक बेहद सुंदर गीत।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के गीत, और आज आप सुन रहे हैं फिल्म बागी के कुछ चुनिंदा गीत। यह फिल्म एक ऐसे संवेदनशील समाज की पृष्ठभूमि पर आधारित थी, जहां प्रेम को बंधनों और रूढ़ियों की बेड़ियों में जकड़ने का प्रयास किया जाता है। यह कहानी है एक ऐसे युवक की जो अपनी अस्मिता, आत्मसम्मान और अपने निश्चल प्रेम की रक्षा के लिए समाज की कुप्रथाओं के विरुद्ध उठकर खड़ा होता है। जब परिस्थितियां एक निर्दोष युवती को दलदल में धकेल देती है, तब नायक का प्रेम केवल एक भावना नहीं रह जाता, बल्कि वह एक प्रतिज्ञा, एक विद्रोह अर्थात बागी का रूप ले लेता है। फिल्म की पटकथा में सामाजिक विसंगतियों पर कड़ा प्रहार किया गया था, जो दर्शकों के दिलों को गहराई तक छू गया।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के गीत, और आज आप सुन रहे हैं फिल्म बागी के कुछ चुनिंदा गीत। अभी आपने सुना अमित कुमार और अनुराधा पेडवाल की आवाजों में ये गीत। सैनिक भाइयों, अभिनय के दृष्टिकोण से यह फिल्म सदैव याद रखी जाएगी। उस समय के उभरते हुए अभिनेता सलमान खान ने इस फिल्म में साजन नाम के युवक के किरदार को जीवंत किया था। उनके अभिनय में प्रेम की मासूमियत तो थी ही, अन्याय के खिलाफ एक तीव्र आक्रोश भी था। इसी फिल्म के माध्यम से रुपहले पर्दे पर कदम रखने वाली अभिनेत्री नगमा ने अपनी सादगी और भावपूर्ण अभिनय से दर्शकों का मन मोह लिया था। इसके अतिरिक्त किरण कुमार, शक्ति कपूर और आशा सचदेव जैसे कलाकारों के सशक्त अभिनय ने इस कथा को एक अद्भुत संतुलन और गंभीरता प्रदान की थी।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के गीत, और आज आप सुन रहे हैं फिल्म बागी के कुछ चुनिंदा गीत। सैनिक भाइयों, जब हम इस फिल्म को याद करते हैं तो इसका सुरीला संगीत स्वतः ही कानों में रस घोलने लगता है। आनंद मलिंग का मधुर संगीत और समीर के अर्थपूर्ण गीतों ने इस फिल्म को अमर बना दिया। अमित कुमार, कविता कृष्णमूर्ति और अभिजीत भट्टाचार्य के कंठ से सजे गीत जैसे कैसा लगता है, चांदनी रात है आदि गीत आज 3.5 दशक बीत जाने के बाद भी अपनी ताजगी और आकर्षण बनाए हुए हैं। यह इस फिल्म के संगीत की ही शक्ति थी कि इसके गीत तत्कालीन समय में बिना रुके अनवरत रूप से रेडियो तरंगों पर राज करते थे।

सैनिक भाइयों, अभी आपने सुना अभिजीत, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाज़ों में ये गीत। हम बात कर रहे हैं फिल्म बागी के बारे में और सुन रहे हैं इसी फिल्म के कुछ चुनिंदा गीत। सैनिक भाइयों, बागी केवल एक व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म नहीं थी, बल्कि यह एक संदेश थी कि सत्य और निश्चल प्रेम की शक्ति के समक्ष हर दमनकारी सोच को झुकना ही पड़ता है। सिनेमा के इतिहास में इस फिल्म का नाम एक ऐसे मील के पत्थर के रूप में दर्ज है जो हमें कलात्मकता और सरोकार के सुंदर समन्वय की याद दिलाता है।

यह आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रागज्योतिषपुर है। मीडियम में 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। सैनिक भाइयों, अब आइए सुनते हैं शीर्षक संगीत। इस कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म तलाश से, आवाज है मानना दे की। आइए सुनते हैं ये गीत।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शीर्षक संगीत। अब आइए सुनते हैं प्रेम पुजारी फिल्म से गीत, एसडी वर्मन की आवाज में।

सनिक भाई, अभी आपने सुना प्रेम पुजारी फिल्म से गीत एसडी वर्मन की आवाज़ में। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शीर्षक संगीत और आइए आप सुनते हैं बाजीगर फिल्म का एक गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में।

0: इस गीत के साथ ही शीर्षक संगीत कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। सैनिक भाइयों, अभी दिन के 2 बजने को हैं। 2 बजे से आप बारी बारी से सुन पाएंगे अंग्रेजी और हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द मिड डे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for coordinated efforts to prevent paper leaks in future examinations. Reiterates government's commitment to ensuring strict action against those involved in NEET paper leak. Proceedings in both houses of parliament disrupted amid opposition uproar on various issues. 11 people killed, several others.

0: साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
1: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिलकर के करें।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन मुक्त व्यापार समझौतों के बारे में भी बात की जो भारत ने कई देशों के साथ किए हैं।
1: प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के किसानों का इंटरेस्ट उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे, उसमें किसानों का हित को सबसे सर्वोच्च ध्यान दिया जाएगा और दिया गया है, इसलिए ये किसानों के हित में और देश हित में रहेगा।
0: मंगल मिलन नाम से आयोजित बैठक के दौरान एनडीए के सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री होने पर बधाई प्रस्ताव पारित किया। बैठक के बाद एनडीए सांसदों ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार देश में परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के सरकार के संकल्प को दोहराया।
2: नीट को लेकर के उन्होंने कहा कि जो गड़बड़ी हुई लोग पकड़े गए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करना है और आगे बेहतर से बेहतर व्यवस्था होगी इसको सुनिश्चित किया जा चुका है और यही कारण है कि फिर से जो परीक्षा नीट की हुई है बहुत ही बेहतर तरीके से हुई।
0: एनडीए संसदीय दल की बैठक में पहली बार शामिल हुए भाजपा के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के साथ मजबूती से खड़ी है।
3: हर तरीके अपने तरीके से बात करनी है पर भारत इतना बड़ा विशाल देश है तो भारत के युवा समझदार युवा उनमें पूरा पोटेंशियल है, वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो राष्ट्रहित में ना हो।
0: भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प दोहराया।
4: हम अपने आप में मंगल भावना के साथ हम आगे बढ़ें, यह प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए संकल्पित होने का सभी अपने माननीय सांसदों को यह आग्रह और निर्देश दिया है। इस 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है तो हमें मंगल कामनाओं के साथ ही काम करना पड़ेगा।
0: संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई है। दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर हंगामे के बीच संसद की अलग अलग समितियों के चुनाव के लिए सदन में प्रस्ताव पेश किए गए। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदस्यों से अपनी सीटों पर लौटने और सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया। इसके बावजूद विपक्षी सदस्य नीट तथा विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर नारेबाजी करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में 12 बजे के स्थगन के बाद बैठक फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीटों पर जाने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की लेकिन विपक्ष ने उनकी बात नहीं मानी। इससे पहले सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट मुद्दे को लेकर कल नई दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मामला उठाया। इसके बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और कहा कि विपक्ष विद्यार्थियों के मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है। संसद के बाहर श्री गांधी ने कहा कि मुद्दा विद्यार्थियों और युवाओं के भविष्य से जुड़ा है।
5: इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है। ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दैट इज ऑल दे आर सेइंग, नथिंग रॉन्ग विद इट।

0: सरकार ने उन कई सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि कल दिल्ली में हुए प्रदर्शनों के दौरान एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली में प्रदर्शन से संबंधित कोई मौत नहीं हुई है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सिक्किम में नामची जिले में एनएचपीसी तिस्ता पनबिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि अब तक 11 शव बरामद किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
1: बारिश और खराब मौसम के बावजूद रेस्क्यू टीम फंसे हुए मजदूरों को सुरक्षित निकलने की पूरी कोशिश कर रही है। माना जा रहा है कि समरदंग में 7 किलोमीटर लंबी टनल के अंदर कम से कम 25 लोग फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांगुले से बात की और हालात से निपटने के लिए हर तरह की मदद का भरोसा दिया। इस बीच जिला प्रशासन ने अब तक 7 शवों की पहचान कर ली है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर रखने के लिए जिला के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश में चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी और कुल्लू जिलों में 24 घंटे के दौरान कई स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है।
2: किन्नौर जिला के करछम बांध और सिरमौर जिला में गिरी जटोन बांध से अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है। स्थानीय प्रशासन द्वारा इन नदियों के साथ लगते इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने व समय समय पर जारी किए जाने वाले दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। उधर किन्नौर जिला के शलखर और समदो में भूस्खलन और चट्टाने गिरने से राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर यातायात बाधित हो गया है। वहीं लाहौल स्पीति जिला में भी जहालमा नाले में आई बाढ़ के कारण संपर्क सड़क बह जाने से यातायात बंद है। शिमला जिला के ठियोग उपमंडल में 16 सड़क संपर्क मार्ग भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हैं और चंबा जिला के लाहड़ू नूरपुर मुख्य सड़क में भी टिक्कर गलाधार में भारी भूस्खलन से मार्ग अवरुद्ध हुआ है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: उत्तराखंड में बारिश और यात्रा मार्गों पर भूस्खलन की आशंका के कारण कल स्थगित की गई चार धाम यात्रा आज फिर शुरू हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: चारधाम यात्रा का संचालन जिला प्रशासन, पुलिस, एसटीआरएफ और संबंधित विभागों के समन्वय से किया जा रहा है। यात्रा मार्गों की लगातार निगरानी की जा रही है और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि यदि भारी बारिश, भूस्खलन या अन्य कारणों से किसी स्थान पर यात्रा मार्ग अस्थायी रूप से बाधित हो तो वे प्रशासन द्वारा निर्धारित सुरक्षित स्थानों पर होल्डिंग एरिया में ही रुके। सभी संबंधित विभागों को मौसम और यात्रा मार्गों की स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और मुजफ्फराबाद में तेज से बहुत तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी भी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, आंध्रिक कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना में भी 24 तारीख तक ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मासिक आर्थिक सहायता को 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये करने की मंजूरी दी है। कल जारी एक आदेश में राज्य सरकार ने कहा कि बढ़ी हुई सहायता राशि सभी पात्र लाभार्थियों को मौजूदा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EAIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने वाणिज्यिक पोत एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले के संबंध में आज दिल्ली में रूस के प्रभारी राजदूत

0: व्लादिमीर लादानोव को तलब किया। 19 जुलाई को इस जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीय मारे गए थे। हमले की कड़ी निंदा करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे हमले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा और स्थिरता कमजोर करते हैं। मंत्रालय ने बताया कि श्री लादानोव से कहा गया कि व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना और इसके कारण निर्दोष नागरिकों की जान जाना स्वीकार्य नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय आतंकवादी संगठन आईएसआईएस में भर्ती से जुड़े मामले में बेंगलुरु में 8 परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। इसमें इकरा वेलफेयर ट्रस्ट, गाइडेंस फॉर मैनकाइंड और बेंगलुरु स्थित अन्य व्यक्ति शामिल हैं। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्योडेंगा के विपणन की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। ये भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू की रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को पहले ही 42 देशों में नियामक स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड शामिल हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के साथ मिलकर लकाडोंग हल्दी मिशन गोल्डन स्पाइस का शुभारंभ किया। मिशन गोल्डन स्पाइस पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए शुरू की गई एक प्रमुख और महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसकी लागत 175 करोड़ रूपये से अधिक है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित उच्चाधिकार समिति ने अरावली पर्वतमाला से संबंधित मामलों पर जनता से राय मांगी है। समिति 31 अगस्त से पहले सर्वोच्च न्यायालय को अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि इच्छुक व्यक्ति दस्तावेजी साक्ष्य और अन्य सत्यापन योग्य सामग्री के साथ अपनी राय mshpcaravali@gmail.com पर ईमेल के माध्यम से 3 सप्ताह के अंदर भेज सकते हैं। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर के सत्र में गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 231 अंक गिरकर 77,478 पर और निफ्टी 52 अंक गिरकर 24,186 पर आ गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल का दौरा किया और वहां डॉक्टरों के साथ बैठक की। उन्होंने नीट यूजी 2026 का पेपर लीक होने के आरोपों को लेकर कल राजधानी में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए लोगों की स्थिति का भी जायजा लिया। श्री नड्डा ने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का भी दौरा किया और वहां भर्ती घायल प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने नीट प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का सरकार का संकल्प दोहराया। संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। सिक्किम के नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग ढहने से 11 लोगों की मौत, कई लोग फंसे, बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी और भारत ने एक वाणिज्यिक जहाज पर हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के मामले में रूस के दूत को तलब किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: समाचार के बाद सैनिक भाइयों, आप सभी का हमारे इस प्रसारण में बहुत बहुत स्वागत है।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मेरे मैप 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्स और DRM फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्स पर। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम गुंजन। इस कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म गीत से। आवाज़ है लता मंगेशकर की। आइए सुनते हैं ये गीत।

सैनिक भाइयों, अभी आपने सुना फिल्म शक्ति से ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुंजन, और आइए आप सुनते हैं कभी कभी फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म कभी कभी से ये सुंदर गीत। सैनिक भाइयों, अब आइए सुनते हैं अमर प्रेम फिल्म से ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

सैनिक भाइयों, अभी आपने सुना मौसम फिल्म से गीत राहत फतेह अली खान की आवाज में। अब आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का अंतिम गीत आनंद फिल्म से मुकेश की आवाज में।

इसी के साथ यह कार्यक्रम गुंजन यहीं पर समाप्त होता है और समाप्त होता है सैनिक भाइयों के लिए हमारा आज का प्रसारण। कल 12:10 पर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे अमित बांसकोटा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: हमारा दिल बिना रुके दिन रात हमारे पूरे शरीर तक रक्त पहुंचाने का काम करता है। हम सो रहे हों, काम कर रहे हों, हंस रहे हों, तनाव में हों या रेडियो डॉक्टर सुन रहे हों, हमारा दिल लगातार हमारे लिए काम करता रहता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम अपने दिल के लिए उतना ही काम करते हैं जितना दिल हमारे लिए करता है? आज हम रेडियो डॉक्टर में यही जानने की कोशिश करेंगे। स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का नमस्कार। हम जानेंगे आज इस कार्यक्रम में कि हम अपने दिल की देखभाल

0: आपसे बहुत सारी बातें हम पहले भी अपने कार्यक्रमों में जानते रहे हैं, कैसे अपने हृदय को स्वस्थ रखें ये डॉक्टर साहब हमें बहुत सरल शब्दों में बताते हैं और आप हमें लिखते रहते हैं कि डॉक्टर साहब को जल्दी बुलाइए। तो लीजिए, आज वो दिन आ गया है, डॉक्टर साहब हमारे साथ स्टूडियो में हैं, रेडियो डॉक्टर में हैं और वो आपकी जितनी परेशानियां हैं उनको हल करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आप हम तक पहुंचेंगे ये आपको वादा करना है। मैं थोड़ी सी देर में आपको बताऊंगी हमारे फोन नंबर, हमारे व्हाट्सएप नंबर जो आप वैसे जानते हैं, लेकिन उन नए श्रोताओं को जो आज पहली बार इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, लेकिन बता दें कि क्योंकि हृदय रोग से के बारे में जब हम बात करते हैं तो आजकल काफी लोग डॉक्टर साहब चिंता में ये हैं कि बहुत जो युवा जो जनरेशन है या यूथ है वो भी इसकी चपेट में आ रहे हैं और आजकल हम बहुत न्यूज में देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं कि यंगस्टर्स है, जिम करते करते डेथ हो रही है, अचानक से कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। तो हमने सोचा इस कार्यक्रम को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाए और अपने यूथ के पार्टिसिपेशन को भी इसमें, हम यूथ के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी इंक्लूड करने की कोशिश करें। तो आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है एक ऐसे ही यूथ रिप्रेजेंटेटिव को जो कि एक कॉर्पोरेट में काम करती हैं, उनका ऐसे ही बिजी शेड्यूल है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। तो हम सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं, हमारे साथ स्टूडियो में है परिधि मित्तल, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी रेडियो डॉक्टर में।
1: नमस्कार।
0: तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि किस तरह से यूथ को ये अफेक्ट कर रहा है ये भी जानेंगे, पहले थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए किस तरह का लाइफस्टाइल है आपका और क्या जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब से आज आप।
1: जरूर, मैं एक मल्टीनेशनल आईटी कंपनी में काम करती हूँ और मेरी तरह ऐसे बहुत सारे युवा होंगे जो आजकल मेरी ही तरह की लाइफस्टाइल जी रहे होंगे। काम चलते अक्सर हमने देखा है कि हमारी देर रात तक मीटिंग्स होती हैं, अलग अलग टाइम स्केड्यूल्स और टाइम जोन के साथ हमें काम करना पड़ता है, इसलिए सोने और उठने का कोई फिक्स स्केड्यूल नहीं रहता। कभी कभी ये भी होता है कि हम पूरे पूरे दिन लैपटॉप और अपने मोबाइल स्क्रीन के सामने हैं, बैठे हुए हैं, ब्रेकफास्ट भी टेबल पे ही कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, डेडलाइंस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो कोई एक रिलैक्सेशन ही नहीं है। तो इसी टाइप का मुझे लगता है काफ़ी यूथ का लाइफस्टाइल रहेगा। तो मेरे कुछ प्रश्न हैं जो मैं इस कार्यक्रम के थ्रू पूछना चाहूंगी डॉक्टर साहब से, बहुत खुश हूँ
0: जी। डॉक्टर साहब सामने बैठे हुए हैं हमारे, परिधि यहाँ हैं और बहुत सारे हमारे श्रोता हैं जो रेडियो के उस पार बैठे हैं या फोन से हमें सुन रहे हैं, हमारा ये कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी आप सुन रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से, तो बिल्कुल जुड़ जाइए हमारे साथ। अगर आपके मन में भी प्रश्न है जिस तरह से परिधि के मन में प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, फोन लाइन्स खुल चुकी हैं, व्हाट्सअप का भी मैसेज बॉक्स खुला है और आपकी तरफ से कुछ प्रश्न मेरे भी होंगे जो मैं पूछना चाहूंगी डॉक्टर साहब से। तो नोट कर लीजिए हमारे फोन नंबर्स 2342108023421082 और अगर आप दिल्ली से बाहर से हमें कॉल लगाना चाहते हैं तो 011 जरूर लगाइए, व्हाट्सएप पर लिखना चाहते हैं तो 9868107070 पर हमें लिख सकते हैं। एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब, पहले मैं ये आपसे जानना चाहूंगी जो हमारा विषय है आज, हम दिल की बात करना चाहते हैं, कौन कौन सी आम तौर पर बीमारियां जो है होती हैं हृदय संबंधी।
2: देखिए, हृदय में बहुत तरह की बीमारियां होती हैं। जब आप जन्म लेते हैं तो आपके वॉल्व ठीक से नहीं डेवलप होते, आपके हार्ट में छेद होते हैं, उन्हें हम कंजेनाइटल हार्ट डिजीज कहते हैं। फिर जब आप युवा होते हैं तो आपके इन्फेक्शन हो सकता है, आपके वॉल्व खराब हो सकते हैं, उनको हम रूमेटिक हार्ट डिजीज कहते हैं। ये वॉल खराब होना आपके बचपन से भी हो सकता है, इन्फेक्शन से भी हो सकता है। फिर जैसे जैसे आप बढ़ते हैं आपकी मसल में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके कंडक्शन सिस्टम में, इसे नहीं कहते आपकी हार्ट बीट कम हो गई या हार्ट बीट बढ़ गई, आपके आर्टरीज जो होती हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है, उससे हार्ट अटैक हो सकता है। कभी कभी माना जाता है कुछ वायरल फीवर हुए जिससे हार्ट की मसल वीक हो गई, हार्ट के ऊपर एक थिक पेरिकार्डियम होता है उसकी भी बीमारी हो सकती है। तो बहुत तरह की बीमारियां हार्ट की होती हैं और हार्ट की बीमारियों के साथ साथ जो ब्लड वेसल्स बाहर जाती हैं उनकी भी बहुत बीमारियां होती हैं। तो एक लंबी लिस्ट है इसमें, कैंसर भी हार्ट में हो सकता है।
0: अच्छा।
2: बहुत मेलिग्नेंसी, तो हार्ट की बीमारियां भिन्न भिन्न तरह की हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए है वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है जिससे हार्ट अटैक पड़ता है, जो रूमेटिक हार्ट डिजीज है जिससे वॉल्व खराब हो जाते हैं, जो कंडक्शन सिस्टम डिजीज है जिससे वॉल्व हार्ट बीट कम हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो ये तीन ग्रुप सबसे कॉमन है हृदय रोगों को लेके
0: जी, लेकिन हम हर विषय पर बात कर सकते हैं अगर आपके कोई प्रश्न है तो। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, क्योंकि ज्यादातर लोगों को उसके बारे में जानकारी देना चाहते हैं हम, तो हम चाहेंगे कि हम बहुत सी आम बातें आज इस कार्यक्रम में शामिल करें, क्योंकि अवेयरनेस इज द की। अगर हमें जानकारी होगी कि किस तरह से इसको

पहचाना जाए, किस तरह से पहुंचा जाए, क्योंकि इसमें यह भी कहा जाता है डॉक्टर साहब कि एक गोल्डन रूल है कि जितना जल्दी इसमें एड मिल जाती है उतना इसमें बचने के चांसेस होते हैं। तो हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि आप अपने प्रश्न हम तक जरूर पहुंचाएं फोन के माध्यम से या लिख कर, जैसा भी आपको कन्वीनियंट हो आप जरूर करें। हम यहां पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, लौट कर आएंगे। इंतजार कर रहे हैं हमें, आपके प्रश्नों का इंतजार कर रहे हैं हम।

0: वो चाहता है, बहुत सारी चीजें चाहता है, लेकिन सबसे पहले हम चाहते हैं कि हमारा दिल स्वस्थ रहे, क्योंकि वो स्वस्थ रहेगा तो हम हर चीज को एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। हेलो
1: जी, नमस्कार।
0: जी नमस्कार,
1: पीपी गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ।
0: जी गौतम साहब नमस्कार।
1: मेरा पूछना है कि आयुर्वेद में कहा गया है कि जो खट्टे पदार्थ है वो दिल के लिए हानिकारक है, क्या एलोपैथ में भी ऐसा माना जाता है या मिथक है? दूसरा एक बीमारी है पैल्पिटेशन, दिल घबराना, क्या ये एक डिसऑर्डर है या एक कंडीशन है? कृपया विस्तार से बताइए।
2: धन्यवाद। खट्टे पदार्थ, किस टाइप के खट्टे पदार्थ की बात कर रहे हैं? जैसे आप नींबू की बात कर रहे हैं, जैसे आप मौसम्मी की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल खतरनाक नहीं, रादर फायदेमंद है वो। तो ये आयुर्वेद में जो कहते हैं कि खट्टे पदार्थ, उसमें हो सकता हो कोई और चीज के बारे में बात कर रहे हो, बट हम फल की बात ही करेंगे। जो खट्टे फल होते हैं, इमली बहुत अच्छी है, एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छे होते हैं उसमें, तो खट्टे पदार्थ ऐसा बिल्कुल गलत है कि दिल के लिए हार्मफुल होते हैं। दूसरा, टैकीकार्डिया जो है वो एक बीमारी है। जब आपकी हार्ट बीट 100 से ऊपर जा रही है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम है। आप एंग्जाइटी में तो भी टैकीकार्डिया हो जाएगा, आपने कफ सिरप पी रखी है तो भी टैकीकार्डिया हो जाएगा। आपको टैकीकार्डिया की बीमारी है, बहुत टाइप की बीमारी ये होती है, पीएसवीटीज कहते हैं, एक्टोपिक एट्रल टैकीकार्डिया कहते हैं। तो अगर आपकी हार्ट बीट 100 से ज़्यादा हमेशा से चलती है तो आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं। हाँ, दौड़ते समय अगर आपकी हार्ट बीट 100 जाती है तो एक नॉर्मल फिनोमिना है, बट रेस्टिंग स्टेज में अगर आपकी हार्ट बीट 90-100 चल रही है, एक बार डॉक्टर को जरूर दिखाएं। हम लोग इसको अच्छा नहीं मानते।
0: इससे क्या हो, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते
2: हैं? हार्ट अटैक के चांसेस है, अगर आपकी हार्ट बीट बहुत लंबे समय तक ज्यादा चल रही है तो इससे आपका हार्ट का फंक्शन कम हो सकता है।
0: ओके, और इट कैन लीड टू फर्दर
2: हार्ट फेलियर लेटर ऑन।
0: ओके,
2: तो हम उसे टैकीकार्डिया इंड्यूस कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं।
0: ओके, तो दिखाना चाहिए।
2: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी। तो किस तरह से पता लगे? मैं एक्चुअली यही पूछना चाह रही थी कि कुछ ऐसे संकेत होते हैं या कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिससे आदमी सचेत हो जाए कि हाँ मुझे जाना चाहिए डॉक्टर के पास, क्योंकि नॉर्मली ऐसे तो लोग जाते नहीं है, चेकअप भी रूटीनली कई लोग नहीं कराते।
2: हमेशा याद रखिये, आप एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे, आपको कोई सिम्टम नहीं था, सडनली आपने महसूस किया कि मैं चलती फिरती हूँ तो मुझे सीने में दर्द होने लगता है, मैं चलता हूं तो मुझे सांस फूलने लगती है, मुझे चक्कर आ रहे हैं आजकल, मैं खड़ा होता हूं तो सडनली आंखों के सामने अंधेरा छा जाता, मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज चल रही है, मेरे दिल की धड़कन कम चल रही है, मेरे चलने में सांस फूलने लगी, पहले मैं 2 स्टेयर चल लेता था अब नहीं चल पाता हूं, हमने अपने नाखूनों में नीलापन देखना शुरू कर दिया, पैरों में सूजन देखना शुरू कर दिया। तो ये सारे के सारे इंगित करते हैं कि आपको कहीं ना कहीं हार्ट की प्रॉब्लम है, उसको जरूर और तुरंत इसका इलाज करें।
0: जी, तो अपने शरीर को देखें, उसको ऑब्जर्व करें, कुछ बदलाव अगर फील होता है तो जरूर डॉक्टर के पास जाएं। और कारणों की बात हम कर रहे थे, आज परिधि हमारे साथ हैं, बहुत सारे कारण आपने बताया हो सकते हैं हृदय रोग के, तो आप कुछ पूछना चाहेंगे, क्योंकि आप चाह रही थी युवाओं से संबंधित कुछ प्रश्न करना।
3: बिल्कुल, क्योंकि यही मेरा पहला प्रश्न था कि पहले हार्ट डिजीजेस तो ज्यादातर 50-60 साल उम्र की बीमारी मानी जाती थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि 25-40 साल के युवाओं में भी हार्ट अटैक्स, हार्ट डिजीजेस, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है, हमें सुनने में अब ज्यादा आने लगा है। तो डॉक्टर, आपके हिसाब से ये बढ़ते ट्रेंड के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, क्या हो सकता है?
2: देखो, जो हार्ट अटैक बचपन में यूथ में होता था वो हार्ट की बीमारी होती थी, रूमेटिक हार्ट डिजीज, जो गरीबी की बीमारी थी, उनको वॉल में इन्फेक्शन हुआ, वॉल खराब हो गया। दूसरी होती थी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, जो बचपन में पैदा होते ही होती थी, यूथ पे ही आ जाती थी। कुछ बीमारी होती थी कार्डियोमायोपैथी, जो यूथ में होती थी। अब यूथ में जो हम, आप जिस बात पे कह रहे हैं कि आपको हार्ट अटैक हुआ, आपकी कोरोनरी आर्टरी थी, आपको उसमें ब्लॉकेज आ गया, वो ब्लॉकेज बंद हो गया, हाँ यूथ में थोड़ा बढ़ रहा है। कारण उसका है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल का मतलब ये नहीं कि आप काम कर रही हैं तो आपकी लाइफस्टाइल खराब है, जो आप खाते पीते हैं, स्मोकिंग का ट्रेंड बहुत बढ़ गया। स्मोकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है हार्ट अटैक होने का, प्लस ड्रग्स का, कोकेन का इंटेक बहुत है, जो इलिसिट ड्रग्स हैं उनसे हार्ट अटैक बढ़ता है। फिर आपने देखा सिडेटरी हैबिट्स, आपके माँ बाप को हार्ट की प्रॉब्लम थी, आपका बच्चा 12 साल का, उसका वजन है 100 किलो, आपका बच्चा 20 साल का हुआ, उसका वजन हुआ 120 किलो, वो सिर्फ घर में बैठा रहता है, सिर्फ जंक फूड खाता है, सिर्फ हाई कार्ब्स डाइट खाता है, वजन बढ़ रहा है, डायबिटिक हो गया, हाइपरटेंसिव हो गया, तो उसकी हार्ट अटैक होने की संभावना 30-40 साल में ही हो जाएंगी। वही बच्चा जिसके माँ बाप को हार्ट अटैक कोरोनरी आर्टरी डिजीज थी, अपनी उम्र को साथ के ही रखता तो हो सकता उसको हार्ट अटैक 70 साल में होता। तो एक ये भी कारण है कि हमारी जो लाइफस्टाइल है, जो युवाओं में लाइफस्टाइल है, और तीसरा है आबादी बढ़ रही है, हमारा YouTube बढ़ रहा है, हमारा सोशल मीडिया बढ़ रहा है, तो पता भी लग जाता है।
0: ये भी बात है, लेकिन जैसे बहुत सारी चीजें होती है जो आपको इम्पैक्ट करती है, जब आप देखते हैं कि कोई इतना कॉन्शियस है अपने बॉडी बिल्डिंग के लिए, ये रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है, जिम जा रहा है, पर इस तरह की चीजें जब आप अपने सामने देखते हैं कि बिल्कुल जिम करते करते एक्सरसाइज करते करते और एज भी कम है और वो रेगुलर वो रहा है हैबिचुअल इन एक्सरसाइज, तो हमें लगता है अरे ये एक्सरसाइज करने के बाद भी हो रहा है, तो क्या कारण?
2: पहली बात आप ये जान लीजिए कि हार्ट प्रोटेक्टिव एक्सरसाइज एक माइल्ड एक्सरसाइज है। अब 40 मिनट एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, उसके ऊपर करते हैं तो ये मत मानिए हार्ट आपका प्रोटेक्ट है। इन लोगों में जो चीज हुई है, जैसे जिम करते करते, ये बेसिकली इनमें कोई ना कोई हार्ट की प्रॉब्लम थी जो इन्होंने दिखाई नहीं, उनको सिम्टम्स थे जो इन्होंने इग्नोर किए।
0: अच्छा।
2: अब एक बहुत बड़े कॉमेडियन जिम करते समय जिनकी डेथ हो गई, वो इसलिए हुई क्योंकि उनको एंजाइना हुआ, उनके हार्ट में 7-8 स्टेंट डले हुए थे, तो उनको एंजाइना होने लगा और उन्होंने कहा मैं जिम से एंजाइना ठीक कर लूंगा। अब वो 10 की रफ्तार से दौड़े तो हार्ट अटैक होने ही था। तो जो ये तरह की घटनाएं होती है ज्यादातर आइदर इनमें कुछ चैनलोपैथीज होती है, कुछ ऐसी बीमारियां होती है हार्ट की जिसको हम लोग मानते हैं कि स्ट्रेस से जिम करने से हार्ट अटैक हो सकता है, तो इनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो हम हमेशा कहते हैं अगर आप ज्यादा जिम करना चाहते हैं एक बार अपने को डॉक्टर को जरूर दिखा के करें। बहुत बार हमने देखा है जिम करने जा रहे हैं कभी ब्लड प्रेशर नहीं नापा, अब जिम करते करते एक दिन को सांस फूलने लगी तो देखा 200/100 बीपी था। अब 200/100 बीपी में आप जिम करोगे तो आपकी हार्ट की ऐसी तैसी होनी ही होनी है। तो ये है इंपॉर्टेंट चीज की ये दोष आप जिम को मत दीजिए, दोष उस इंसान को दीजिए जिसने वो चेक नहीं किया।
0: जी, कई बार ऐसा भी होता है जैसा आप बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब, कि हमारे हमने ये देखा है इंडिया की मैं बात कर रही हूँ कि अपने आप से लोग टीवी देखकर शुरू कर देते हैं एक्सरसाइज करना, कि ये दिखाया जा रहा है मैं कर लूँ, या जिम चले गए वहां पे उन्होंने बोला मुझे जिम ज्वाइन करना है और उधर में आपका इंस्ट्रक्टर भी नहीं है, आप बस चढ़ गए आप किसी मशीन पे ट्रेडमिल पे, मतलब इट इज नॉट गाइडेड एज सच एंड इट इज नॉट कस्टमाइज्ड एज सच, तो ये सारी चीजें भी नुकसान कर सकती हैं और शायद यही वो इंपैक्ट डालती हैं जब आप इतनी अवेयरनेस के साथ एक्सरसाइज नहीं करते हो।
2: आपको अगर एथलीट नहीं बनना है, आपको बैडमिंटन प्लेयर नहीं बनना है, तो आप सुबह उठिए एक नॉर्मल वॉक करिए 5-6 किलोमीटर पे, वॉक करने के बाद थोड़ी स्ट्रेचिंग करिए। योगा में हमारे पीटी सिखाते थे हाथ को ऊपर ले जाओ, नीचे ले जाओ, आगे ले जाओ, थोड़ा पीछे स्ट्रेच कर लो, थोड़ा साइड में स्ट्रेच कर लो, इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। तो आप अगर एक स्वस्थ जीवन जीना चाहती हैं तो वॉक करिए, वॉक करने के साथ साथ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लीजिए, आपके लिए वो सफिशिएंट है। अगर आप बॉडी बनाना चाहती हैं तो किसी की सहायता लीजिए, कोई ट्रेनर की सहायता लीजिए। आप योगा करना चाहती है, छोटे मोटे योगा आप आराम से कर लीजिए, बट अगर आप अच्छा योगा करना चाहती हो आप टीवी देख के करेंगी तो कहीं ना कहीं आप अपने को नुकसान पहुंचाएंगे।
0: जी, बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं और हम चाह रहे हैं कि ये हाईलाइट हो हमारे इस प्रोग्राम में, ये फैक्टर्स जो कई बार हम इग्नोर करते हैं, हमें पता होता है हम अच्छे के लिए कर रहे हैं एक्सरसाइज या टीवी भी देख कर रहे हैं तो अच्छे के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली हमको हार्म पहुंचा रहा है ये हम नहीं जान पाते हैं। तो जो लोग भी कार्यक्रम सुन रहे हैं हम ये चाहते हैं कि आप जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं उनकी एडवाइस फॉलो करें। एक श्रोता वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर। हेलो
4: हेलो
0: हेलो जी, नाम बता दें अपना।
4: हाँ जी, मैं श्याम, श्याम सुंदर।
0: जी जी, बताएं कहाँ से बोल रहे हैं?
4: श्याम सुंदर धवन हूँ।
0: जी जी, हाँ बताएं क्या पूछना है?
4: ऐसे है डॉक्टर, नमस्कार जी।
2: नमस्कार
4: सर, मेरी विशेषता 1903 में वारल का मिलता पीजीएल चंडीगढ़, सतारा 2016 में सर, 2016 में तो वो वाल्व।
0: डॉक्टर साहब हमें समझ नहीं आ रहा है आपकी आवाज ब्रेक हो,
2: मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बता रहे हैं कि आपके मिसेज का वॉल्व सुकुड़ गया तो क्या करें?
0: जी,
2: अगर वॉल्व सुकुड़ गया तो आप डेफिनेटली कार्डियोलॉजिस्ट से मिलें, अपना इको कराएं और उसका इलाज हो सकता है।
4: 2016
0: आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है श्याम जी, अगर आप दोबारा लगाकर बात करना चाहें तो प्लीज करें, क्योंकि हम बात नहीं आपसे कर पा रहे हैं। और बहुत सारे प्रश्न हमारे पास आ गए हैं व्हाट्सएप के माध्यम से भी, हमारे श्रोता हमारे गेस्ट का स्वागत कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है, 48 इयर्स की है एज है इनकी, और इन्होंने जिम ज्वाइन कर रखा है। इन्होंने लिखा है, जिम स्टार्ट करने से पहले कोई मेडिकल टेस्ट, जैसे हम अभी बात कर ही रहे थे उस पर इनका आया प्रश्न कि क्या कोई मेडिकल टेस्ट

0: करवाना चाहिए या नहीं, जिससे पता चले कि मैं फिट हूं। चानेश्वर गोत कराची से ये हमारे श्रोता हैं अमर रमेश कुमार खत्री।
1: देखिए बिल्कुल है, अगर आप बहुत लाइट सा जिम करना चाहें तो आप अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक करा लें, आप अपनी शुगर जरूर चेक करा लें आप, और इसके पहले ये जरूर जाने कि आपको कोई सिम्टम्स तो नहीं है। आपकी सांस फूलती है तो बिना डॉक्टर के दिखाए जिम में आ जाए, आपको चलने में सीने में दर्द होता है तो बिना दिखाए, आपको चलने में चक्कर आते हैं ना जाए। तो अगर आप अच्छा जिम करना चाहते हैं तो आप अपना ब्लड प्रेशर शुगर एक ECG तो करा लें और एक कार्डियोलॉजी से या फिजिशियन से अपनी एग्जामिनेशन करा लें, उसके बाद ही आप विग्रस जिम में जाए। माइल्ड जिम में हम लोग कहते हैं कि आप ब्लड प्रेशर करा लें, शुगर ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है।
0: ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का
1: किस लेवल का जिम करना चाहते हैं।
0: बिल्कुल। प्रकाश चंद्र जी लिख रहे हैं रोहिणी दिल्ली से कि डिफरेंस बता दीजिए डॉक्टर साहब कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक का, आप बता चुके हैं हमारे कार्यक्रम
1: जी। हार्ट अटैक में, हार्ट अटैक हम बेसिकली एंजाइना को कहते हैं, आपके सीने में आर्टरी बंद हुई, आपको सीवियर चेस्ट पेन हुआ, और कार्डियक अरेस्ट मतलब मरीज बेहोश होकर गिर गया हो। तो हर कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक नहीं होता और हर हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट नहीं होता। कार्डियक अरेस्ट के और भी बहुत कारण है हार्ट अटैक के।
0: तो हार्ट अटैक जब होता है तो पेन,
1: तो उसमें 10% या 20% लोगों को कार्डियक अरेस्ट भी हो जाता है। तो हमने कहते हैं बेहोश होकर गिर गया, फिर हमने CPR किया, बचा लिया, नहीं बचा पाए। तो कार्डियक अरेस्ट का मतलब है कि आप बेहोश हो चुके हैं, आपका हार्ट काम करना बंद कर चुका है।
0: जी, आपने CPR का जिक्र किया, ये एक फर्स्ट एड भी बहुत जरूरी है सबको जानना, CPR जानना, तो किस तरह से वो हेल्प करता है अगर किसी को लाइफ सेव कर सकते हैं?
1: आपका कार्डियक अरेस्ट हुआ इसका मतलब आपके हार्ट ने काम करना बंद कर दिया है, तो आपको ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी। तो आप मसाज करके हार्ट को अगर ऊपर से दबाएंगे तो उससे भी ब्लड पंप हो जाएगा। तो हार्ट आपके पीछे हार्ट है, ऊपर से आपने चेस्ट दबाना शुरू किया तो हार्ट भी उसमें दबता है, जब हार्ट दबता है तो ब्लड पंप कर देता है। तो ट्रांजिएंट, जब तक आपको फर्स्ट एड ना आ जाए, आप कम से कम ब्रेन को ब्लड पहुंचा सकते हैं। और कार्डियक अरेस्ट तो हम 30 मिनट बाद भी रिवाइव कर सकते हैं, लेकिन ब्रेन 3 मिनट बाद रिवाइव नहीं होता।
0: तो दैट इज व्हाई इट्स सो,
1: उस समय जब तक आपको मेडिकल हेल्प ना आए, अगर आप ढंग का कार्डियक मसाज करते रहते हैं तो ब्रेन बचा लेते हैं और पेशेंट को हो सकता है बचा भी ले जाए।
0: जी, तो अगर किसी का घर दूर है या उसको पहुंचने में टाइम लग रहा है तो CPR के थ्रू उसको बचा
1: लेना। बिल्कुल, अगर वो कार्डियक अरेस्ट में उसको कोई पल्स नहीं मिल रही, उसकी सांस बंद हो गई है, तो आप CPR करके, बिल्कुल बहुत बार आपने देखा होगा बहुत लोगों को बचाया जा चुका है।
0: पर CPR को सीखने के लिए उसको सही तरीके से करना बहुत जरूरी है,
1: बहुत जरूरी है। आजकल बहुत NGOs ट्रेन करते हैं, आजकल बहुत YouTube में भी CPR के कैसे करें CPR, तो अगर आप चाहें तो आप YouTube से भी सीख सकते हैं और बहुत NGOs की ट्रेनिंग देते हैं।
0: जी, तो ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि हम किसी की मदद कर सकते हैं, किसी फैमिली मेंबर की या किसी रिलेटिव या फ्रेंड या नेबर, जो भी हमें दिखता है उसकी हेल्प कर सकते हैं। हमारे एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो,
2: हेलो
0: जी, आप रेडियो डॉक्टर में?
2: जी अमित त्यागी बात कर रहा हूँ। मैम, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: जी नमस्कार अमित जी।
2: सवाल मेरा मैम ये है कि जैसे दो इंसान घर में ही कसरत करते हैं, योगा करते हैं, उनके लिए भी कोई टेस्ट कराना चाहिए?
1: नहीं नहीं, आप एक हमेशा याद रखिए, आप अगर 40 साल 50 साल के युवा हैं तो कम से कम आपका एक बार ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर तो आपका मेजर होना ही चाहिए। ये तो आप करें या ना करें ये तो रूटीन है, क्योंकि अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है और आप योगा करते हैं तो ये गलत है, कंट्रोल करिए उसको। तो जो एक सिंपल से टेस्ट है, आपका हीमोग्लोबिन 7 है और आप योगा करने चलेंगे, तो ये आप घर में योगा करते हैं बहुत अच्छी बात है। फिर भी हम हमेशा कहते हैं कि एक इंसान को साल में एक बार अपने बेसिक टेस्ट करा लेना चाहिए।
0: जी, आप हीमोग्लोबिन की बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, मुझे एक मैसेज दिखा है दिव्या का, बिहार से आए, हीमोग्लोबिन इनका 7.9 है, BP हमेशा कम रहता है, क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब?
1: हीमोग्लोबिन 7.9 क्यों है, इसकी जांच करानी चाहिए, इनके ब्लड टेस्ट कराने चाहिए, हो सकता है आयरन डिफिशियंसी के कारण हो, हमें उसको सप्लीमेंट करना है। अगर हीमोग्लोबिन उससे ऊपर चला जाता है तो बहुत बढ़िया है, 7.5 हीमोग्लोबिन शरीर के लिए बहुत खतरनाक है। तो आप किसी डॉक्टर को दिखा के अपनी जांच कराइए।
0: और बीपी लिखा है हमेशा कम रहता है,
1: अच्छी बात है, बीपी कम रहना कोई
0: बीपी का कुछ इशू इतना नहीं है, लेकिन हीमोग्लोबिन के लिए आपको दिखा,
1: बिल्कुल दिखाइए आप, बहुत कारणों से हीमोग्लोबिन कम होता है।
0: अच्छा, तो ये टेस्ट होंगे और पता
1: चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल
0: जी। और डॉक्टर साहब सुधीर कुमार कुतुबगढ़ से लिख रहे हैं, नमस्कार मैडम जी, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। डॉक्टर साहब को बुलाते ही मैडम हार्ट अपने आप ठीक हो जाता है। तो डॉक्टर साहब आया करिए, इतने सारे श्रोताओं का हार्ट ठीक हो जाएगा। और हमने डॉक्टर डे पर डॉक्टर साहब

0: आप को याद किया था और आपने मुझे याद है, आपने मैसेज भी किया था।
1: जी
0: और डॉक्टर साहब की एक कहावत हमें याद रहती है, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, तो
1: जी
0: आप बता दीजिए डॉक्टर साहब, बहुत सारे हमारे श्रोता होंगे कि ये आपने क्यों कहा था, क्यों कही थी ये कहावत।
1: मैंने कहा था कि देखिए, आपको अगर आपके फैमिली में आपको माँ बाप को डायबिटीज है, आपके माँ बाप को ब्लड प्रेशर है, आपके माँ बाप को हार्ट अटैक है, उसके बाद भी आपने अपनी लाइफ स्टाइल नहीं सही की, तो एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, तो आपको बीमारी बहुत जल्दी होनी है।
0: जी, तो इस कॉन्टेक्स्ट में डॉक्टर साहब ने कहा था, और अगर आप ये बात याद रखते हैं तो ये वाली बात भी याद रखते
1: बिल्कुल
0: होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर कुमार से, सुधीर जी आपने हमें मैसेज किया, हमें याद दिलाया है डॉक्टर साहब की बात, जो और सभी श्रोताओं तक पहुंची है। यहाँ पर एक म्यूजिकल ब्रेक लेकर वापस आएंगे, आप यूं ही हमें लिखते रहिए और इस कार्यक्रम को सुनते रहिए, क्योंकि हमें इंतजार है आपके प्रश्नों का। आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: आप हैं रेडियो डॉक्टर में और रेडियो डॉक्टर में बात हो रही है आज प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिजीजेस पर, कैसे हृदय रोगों से अपने आप को सुरक्षित रखें, कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। हमारे रेडियो डॉक्टर हमारे साथ हैं, आप प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी हेड डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन डॉक्टर राकेश यादव, और हमारे साथ हमारी युवा प्रतिनिधि परिधि मित्तल साथ में है। आपके प्रश्न हमें लगातार मिल रहे हैं, हमारे श्रोता भी वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर, पहले इनसे बात कर लेते हैं। हेलो
2: हेलो
1: जी नमस्कार
2: जी, मैं आईपी पांडे बोल रहा हूँ हौज खास दिल्ली से।
1: जी
2: डॉक्टर साहब को और आपको भी मेरी तरफ से नमस्कार।
1: जी नमस्कार
2: डॉक्टर साहब। एक्चुअली ऐसा हुआ कि 2 साल पहले मेरे को गैस में थोड़ा सा गैस की प्रॉब्लम है मुझे, तो मैं एक सरकारी हॉस्पिटल में गया और डॉक्टर साहब ने मुझे ब्लड टेस्ट लिखा और ईसीजी करने को कहा। ईसीजी के बाद उन्होंने टीएमटी कहा और टीएमटी में भी कुछ प्रॉब्लम आया तो उन्होंने एंजियोप्लास्टी कराया, सीटी स्कैन कराया, और जयप्रकाश नारायण में मैंने कराया था सीटी स्कैन, उसमें कुछ भी नहीं आया जबकि टीएमटी और ईसीजी में कुछ प्रॉब्लम दिखाया। तो क्या ये हार्ट की प्रॉब्लम है और इन बिटवीन मुझे मेडिसिन डॉक्टर ने शुरू
3: किया? अगर आपको सीटी स्कैन नॉर्मल है सीटी एनजियो तो आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज नहीं है, बट अगर ईसीजी में कोई और प्रॉब्लम है वो और तरह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो आप अपने डॉक्टर से दिखाएं कि आपकी ईसीजी में क्या प्रॉब्लम है। टीएमटी अगर माइल्ड पॉजिटिव और सीटी नॉर्मल है तो इसके मतलब आप नॉर्मल, आपका हार्ट का एंजियोग्राम है, डोंट वरी।
2: डॉक्टर साहब उन्होंने एक्चुअली सीटी स्कैन को तो नॉर्मल बोल दिया लेकिन जो टीएमटी हुआ था उसमें कुछ प्रॉब्लम दिखा।
3: अरे टीएमटी को उठा के फाड़ के फेंक दीजिए, जब एक बार आपका सीटी हो गया उसमें सब नॉर्मल है तो टीएमटी का कोई रोल नहीं है।
2: ठीक है डॉक्टर साहब, मैं रेगुलर योगा करता हूँ और मॉर्निंग वॉक भी करता हूँ, तो क्या मुझे चांस बनता है क्या इस तरह की प्रॉब्लम होने की?
3: नहीं होगा, आप बढ़िया योगा करिए, बढ़िया वॉक करिए, अगर सीटी एनजियो नॉर्मल है तो हार्ट अटैक होने की संभावना आपकी शून्य के करीब है।
2: थैंक यू डॉक्टर,
1: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और एक और साथी हमारे फोन लाइन पर है। हेलो
4: नमस्ते शालिनी जी।
1: जी नमस्कार
4: डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
3: नमस्कार
1: जी, नाम बता दीजिए।
4: सर मैं सतबीर सिंह गांव बेगान सोनीपत हरियाणा से।
1: जी जी बताएं बताएं
4: डॉक्टर साहब, मैं हार्ट जो वर्टिकल होता है और ओरिजेंटल उसमें क्या है डॉक्टर साहब?
3: आपको हार्ट की कोई दिक्कत है?
4: वो मेरे हार्ट में कुछ खिंचाव सा होता है डॉक्टर साहब।
3: आपको चलने फिरने में कोई दिक्कत है? आपका इको खराब है?
4: दिक्कत नहीं है,
3: तो वर्टिकल और ओरिजेंटल
4: हुआ था तो
3: देखिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हार्ट से आपको अगर कोई दिक्कत नहीं है तो कोई बात नहीं है। हाँ उसकी एनाटॉमी में कोई दिक्कत है तो अलग बात है, वो हम बिना आपका इको देखे बता नहीं सकते, पर एज फार एज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल हार्ट आपको कोई सिम्टम नहीं है तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं है।
1: चलिए धन्यवाद कॉल करने के लिए। और आप कुछ पूछेंगे युवाओं के लिए संबंधित?
5: हाँ, मेरा एक प्रश्न है, अभी डॉक्टर साहब से जब मैंने पहले पूछा था उन्होंने ई सिगरेट की बात की थी, तो मेरा ये प्रश्न था कि आजकल बहुत से युवा ई सिगरेट या वेपिंग का इस्तेमाल करते हैं, कई लोगों का ये मानना है कि अगर उसमें निकोटीन नहीं है या वो निकोटीन फ्री है तो उससे कोई नुकसान नहीं।

0: नहीं होता। लेकिन क्या ये सच है? क्या ई सिगरेट या वेपिंग, चाहे उसमें निकोटीन हो या ना हो, दिल और फेफड़े की सेहत पे कोई भी असर नहीं डालता?
1: ये वेपिंग बेसिकली ई सिगरेट निकोटीन ही होती है, उसको कहा जाता है वो प्योर फॉर्म ऑफ निकोटीन है। सिगरेट में कहा जाता 7000 चीजें सिगरेट से पेट अंदर जाती हैं, वेपिंग में कहा जाता सिर्फ निकोटीन जाता है। बट एक चीज मानिए, निकोटीन जो है वो एडिक्शन है, इसकी एडिक्शन लाइबिलिटी है। हो सकता है आपको हार्ट अटैक ना करे, पर ग्रेजुअली ये आपके दिमाग को खराब करेगा, एडिक्शन लाइबिलिटी है। और बहुत बार जैसे यूथ लेता है, इम्पोटेंसिंग का बहुत इंपॉर्टेंट कारण वेपिंग है। बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि ग्रेजुअली इम्पोटेंट हो रहे हैं बच्चे, स्किन की प्रॉब्लम निकोटीन से होती है। तो ये रिप्लेसमेंट नहीं है। और वेपिंग में आप देखोगे दिन भर पीता रहता है, तो वो भले कहता है कि सर वेपिंग में हम 40 वेप लेते हैं तो एक सिगरेट का निकोटीन जाता है, बट वो दिन भर आप ले रहे हैं तो आप बताइए कितनी निकोटीन कंज्यूम कर रहे हैं। तो वेपिंग देश में बैन है, और मैं तो बिल्कुल समर्थन करता हूं कि ये बैन होनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत अधिक मात्रा में निकोटीन जाता है।
0: जी, तो ये एडिक्शन
1: एडिक्शन है, बहुत बड़ा एडिक्शन।
0: जी, हमारे एक और साथी हमारे साथ फोन लाइन पर है। हेलो।
2: हेलो
0: जी।
2: जी नमस्कार।
0: जी नमस्कार,
2: मैं मोहम्मद काजिम बोल रहा हूँ दिल्ली से।
0: जी काजिम साहब, बताएं क्या पूछना है।
2: डॉक्टर साहब नमस्कार।
1: नमस्कार
2: सर, मुझे पूछना ये, जैसे आपने शुरू में कहा कि हार्ट में कैंसर भी हो सकता है, और कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसको लोग सबसे जो है जब एडवांस स्टेज में पहुंच जाए तो इलाज कराते हैं, तो हार्ट कैंसर के बारे में बताइए विस्तार से।
1: हार्ट में जो कैंसर होता है वो हार्ट में कैंसर उसकी मसल में हो सकता है, उसके फाइबर्स में हो सकता है, उसके पेरिकार्डियम पे हो सकता है, और ये कभी कभी स्लोली ग्रो करता है। तो हार्ट के अंदर कैंसर है तो सिम्टम मिलेंगे कि आपकी सांस फूलेगी, सांस फूल के वॉल्व खराब कर सकता है। तो हार्ट में जो भी कैंसर है वो भी ऐसा नहीं है कि साइलेंट होते हैं, और इसमें कुछ कैंसर का इलाज है, कुछ का नहीं है।
0: चलिए धन्यवाद, आपको प्रश्न का जवाब मिल गया। और डॉक्टर साहब मैसेजेस भी बहुत सारे हैं हमारे पास। एक ये मैसेज है, लिखने वाले हैं डॉक्टर आदित्य बत्रा के बारे में, बातचीत जो अभी हमने न्यूज सुनी थी उसके बारे में उन्होंने कुछ पूछा है। और रोहतक से हमें मैसेज किया है आरएस मलिक जी ने, लिख रहे हैं कि डॉक्टर साहब मैं 70 साल का हूं और मेरे 2 बार स्टेंट पड़ चुके हैं, और मैं इको स्प्रीन 75/40 ले रहा हूं। क्वेश्चन इनका बहुत स्पष्ट मेरे पास नहीं आया, लेकिन एक तो ये वेट लॉस के बारे में पूछ रहे हैं कि मुझे वेट लॉस है और क्या मैं दवाई रिड्यूस कर सकता हूं।
1: देखिए बेसिकली एस्प्रिन तो 75 से कम नहीं कर सकते, स्टैटिन 40 मिल रही है, तो अगर आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बहुत कम हो गया है तो उसको रिड्यूस कर सकते हैं। अक्सर स्टैटिन से आपका वेट लॉस बहुत रेयर होता है, बट होता क्या है कि जब आपको हार्ट अटैक होता है तो आप अपनी जिंदगी को सुधार लेते हैं, तो आप कम वैसे ही खाते हैं, आप वॉक करना शुरू कर देते हैं,
0: ऑयली चीजें नहीं खाएंगे, डीप फ्राई नहीं खाएंगे,
1: तो आपका वेट अपने आप कम हो जाता है।
0: जी, जी, जी,
1: तो अगर आपने ये सब काम नहीं किया है और फिर भी वेट लॉस हो रहा है तो जरूर आप डॉक्टर को दिखाएं। बट अगर आपने अपनी डाइट और सब रेस्ट्रिक्ट कर रखा तो वेट लॉस तो स्वाभाविक है।
0: और मेडिसिन को अपने से कम ज्यादा करना,
1: जो दवा दी गई है उसको बिल्कुल कम नहीं करना, इसमें कुछ दवाएं आजीवन खाई जाती हैं।
0: और जितना डॉक्टर बोले, और जब उसको कम करवाना है तो डॉक्टर ही से लेकर एडवाइस आप करें। मोनिश इदरीसी बिलासपुर यूपी से इन्होंने हमें लिखा है कि मेरे जिया जी को पसीना बहुत आता है, और क्या ये भी कोई संकेत है? क्या दिल की बीमारी का संकेत होता है अगर पसीना आए तो?
1: कुछ लोगों को ज्यादा पसीना आता है, इसका किसी चीज से लेना देना नहीं है, उनको थोड़ा सा अपने को प्रॉपरली हाइड्रेट रखना चाहिए।
0: जैसे लक्षणों की जब हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, तो कौन से ऐसे लक्षण है? तो कई बार ये कहा जाता है पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है।
1: वो एक एपिसोडिक है, उस समय आपको बहुत पसीना आ रहा है क्योंकि आपका सिंपैथेटिक ड्राइव बहुत बड़ा हुआ है। बट अगर उनको ज्यादा पसीना आता है, दिन भर आता है, नॉर्मल है, तो उसके लिए
0: रूटीन में आता है तो ऐसी कोई बात नहीं है।
1: वो तो एपिसोडिक, उस समय आपको पसीना आ रहा है।
0: और क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जो बहुत अलार्मिंग होते हैं?
1: ये चेस्ट पेन सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके चलने पे सीने में दर्द हो रहा, बहुत सीवियर, अक्सर एसिडिटी की फीलिंग होती है कि जलन हो रही है पेट में। तो अगर वो अनयूजुअल है और आपको लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको कभी दबाए ना, उसको तुरंत लेके डॉक्टर के पास मिले।
0: और कई बार डॉक्टर साहब कहते हैं कि शोल्डर या हाथ में भी चला जाता है पेन।
1: देखिए नाभि से चिन तक कोई भी पेन अगर चलने फिरने में हो रहा है तो वो एंजाइना है। कोई भी पेन बहुत सीवियर हो रहा है, जिससे आपको स्वेटिंग हो रही है, आपको लग रहा है, आपको घबराहट हो रही है, तो वो भी एंजाइना के सिम्टम हो सकते हैं। कभी कभी एंजाइना सिर्फ वॉमिटिंग के साथ प्रेजेंट करता है, आपको

0: तो वॉमिटिंग हुई, पता लगे इन्फीरियर वाले में आई है। तो कोई सिम्टम्स ओल्ड एज में इग्नोर ना करें अगर वो आपको ट्रबल दे रहे हैं।
1: जी, और क्या ये सिम्टम्स सबसाइड कर जाते हैं अगर वो आदमी रेस्ट करे या बढ़ जाते हैं?
0: बेसिकली रेस्ट करने में कम तो हो जाते हैं, बट एक्यूट हार्ट अटैक जो पड़ रहा है उसमें तो आर्टरी आपको खोलनी है, आर्टरी तो बंद हो गई है। जो एंजाइना होता है उसमें आर्टरी 80% 90% तक बंद होती है, तो वो आगे का लोड नहीं ले पाती। जैसे रेस्ट करेंगे वो फ्लो चला जाएगा, बट जो एक्यूट हार्ट अटैक होता है उसमें तो आर्टरी बंद हो चुकी होती है।
1: ओके,
0: उसमें रेस्ट करने से दर्द कम नहीं होगा, हाँ आपको अस्पताल ले जाने में सहूलियत होगी।
1: जी। एक और हमारे साथी हैं जो कुछ पूछना चाहते हैं। हेलो,
2: नमस्ते मैम।
1: नमस्कार जी,
2: मैं उमेश गाजीबाद से बोल रहा हूँ।
1: जी, बताएं उमेश जी, क्या पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब से?
2: डॉक्टर साहब को नमस्कार।
0: नमस्कार
2: डॉक्टर साहब, मेरी उम्र 44 वर्ष है, मैं ठीक हूँ, पर मुझे इस टाइम घबराहट होती है कभी कभी, तो मैं आपसे ये जानना चाहता है किस बीमारी का संकेत है और मुझे कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए जिससे मुझे पता पड़ जाए।
0: पहले तो आप डॉक्टर के पास जाइए। घबराहट बहुत बार आपकी एंजाइटी से होती है, आपकी स्लीप डिस्टर्ब है, आपके जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ प्रॉब्लम है, आपकी फैमिली प्रॉब्लम है, तो पहले आप अपना असेसमेंट कराइए कि ये घबराहट किस कारण हो रही है, तब इलाज कराइए। ज़्यादातर ये घबराहट जो होती है हम उनको एंजाइटी के कारण ही होती है, और साइकेट्रिस्ट इसके लिए बेस्ट लोग होते हैं।
1: तो मुझे लगता है आप तक उमेश जी जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, पहले आप इसको रूल आउट कर लीजिए कि कोई स्ट्रेस एंजाइटी तो नहीं है आपको। मनीषा जी हमें लिख रही हैं, 75 इयर्स की हैं, रांची में रहती हैं। डॉक्टर साहब मुझे AFIB हो गया है, कोई बीमारी का नाम लिखा है उन्होंने।
0: AFib।
1: ओके, इन्होंने कैपिटल
0: एट्रियल फिब्रिलेशन हो गया 75 साल में, कोई बात नहीं, इसका इलाज है, कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाइए, इसकी दवा है, कंट्रोल करिए।
1: अच्छा, ये हार्ट डिजीज है।
0: हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत होता है इस स्टेज
1: तो
0: में।
1: सावधानी कुछ लिख सक
0: दवा खाइए, आपको जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे वो दवा खाइए, ये आप अपनी अकल से इसको ठीक नहीं कर सकते।
1: ठीक है, इन्होंने लिखा दवाई तो मैं खा रही हूँ, पर कोई सावधानी हो तो आप बता।
0: कुछ नहीं है, आप बस योगा कर सकती हैं, रिलैक्सिंग एक्सरसाइज कर सकती हैं, तो उसमें भी पाया गया ये इसके इंसिडेंस कम हो सकते हैं।
1: जी, तो जैसे आपने बताया कि बहुत सारी ये बीमारियां हो सकती हैं, तो किस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं? अगर एनुअली हम कोई टेस्ट कराना चाहें तो कर सकते हैं, क्या प्रिवेंटिव की बात करें?
0: बेसिकली एनुअल चेकअप का जो फंडा है कि आप हमेशा अपना एक साल में एक बार ब्लड प्रेशर, अगर आपको नहीं है, शुगर और कोलेस्ट्रॉल कराएं, तीन बस।
1: अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, जैसे आजकल बहुत
0: इलाज कराएं, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो इलाज कराएं, शुगर बढ़ी हुई तो इलाज कराएं, ये और आपका एक जनरल एग्जामिनेशन हो जाए। इतना अगर आप कराते रहते हैं तो आपकी जो बीमारियां हैं वो बहुत जल्दी पकड़ में आ जाएंगी।
1: जी, तो प्रिवेंशन पर हम और बात करेंगे। हमारे एक श्रोता भी आ गए फोन लाइन पर, मैं एक म्यूजिकल ब्रेक लेने वाली थी लेकिन पहले इनसे बात कर लेते हैं। हेलो
3: हेलो, हाजी शालिनी मित्तल जी, नमस्कार।
1: जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
3: और डॉक्टर साहब को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं PR साहू बोल रहा हूँ, लक्ष्मी विहार बुढ़ारी से।
1: जी साहू जी, बताएं क्या प्रश्न है?
3: मैं ये पूछना चाह रहा था जी कि पहले मैं 10 साल पहले एम लीव डिपिन जो ये BP की दवाई ले रहा था, तो अभी ये कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो डॉक्टर ने मुझे प्रेस्क्राइब किया Telma 14। तो सर उससे जो है ना कम हो गया, मतलब ये हो गया अब 130 और 64।
0: बढ़िया, खाते रहिए दवा से कंट्रोल में।
3: तो सर ये मतलब कंटिन्यू रखना है या छोड़ना है?
0: कभी नहीं छोड़ा जाता, बीपी की दवा अगर एक बार शुरू हो गई तो जिंदगी भर चलनी है, कभी मत छोड़िएगा इसको।
3: अच्छा, ठीक सर, यही मैं पूछना चाह रहा था।
1: धन्यवाद, आपको जवाब मिल गया। और यहाँ पर एक म्यूजिकल ब्रेक लेकर वापस आएंगे। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, समय कम है, आप हमें फोन कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब यहाँ पर रहेंगे 4 बजे तक। क्या आपके क्वेरीज हैं आप जरूर पूछिए। हम बात कर रहे हैं हार्ट डिजीज पर।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर और बात हो रही है प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिजीजेस पर। हमारे साथ परिधि हैं। परिधि, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से?
1: मैंने जैसे शुरू में बताया था कि यूथ का मेरा भी काफी बहुत खराब स्केड्यूल हो गया है, बिकॉज वर्क है, लेट तक चल रहा है, लेट उठ रहे हैं, टाइम का कुछ वो खाने पीने का कुछ वो है नहीं स्केड्यूल। तो अगर किसी व्यक्ति का स्लीप स्केड्यूल हमेशा से ही इरेगुलर हो तो क्या शरीर को इसकी आदत
2: नहीं
1: पड़ जाएगी?
2: नहीं पड़ सकती,
1: क्या उससे बीमारियों का खतरा
2: बिल्कुल
1: कम हो जाएगा?
2: बढ़ जाएगा। देखो, अच्छा। हमेशा याद रखो, स्लीप जो है वो आपके शरीर में दिमाग को ही नहीं, शरीर के हर अंग को रेस्ट देता है। इसलिए कहा जाता है कि स्लीप के चार साइकिल होते हैं। अगर आप चार साइकिल प्रॉपर नहीं कवर कर सकते हैं तो आपकी स्लीप अच्छी नहीं है। स्लीप अच्छी नहीं है तो आप सुबह चिड़चिड़े बनेंगे, आपको थकान रहेगी, पैर में दर्द रहेगा। तो ये जरूर मानिए कि स्लीप अच्छी लेना बहुत ज़रूरी है। और आदत, अगर आप इररेगुलर स्लीप में हैं तो आपकी आदत नहीं बन जाएगी, आपका शरीर खराब होना शुरू हो जाएगा। दूसरा बात है, आजकल जो मल्टीनेशनल्स में युवा काम कर रहे हैं, जो रात में दो

0: बजे तक काम करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप 2 बजे तक काम कर रहे हैं तो 2 बजे के बाद 4 बजे तक पार्टियाँ मत करिए। 2 बजे काम बंद करके खाना खाइए, सो जाइए और सुबह उठिए 8 बजे 9 बजे। आप ये मत कीजिए कि 4-5 तक पार्टियाँ होती हैं, फिर शरीर आपका इतना थक चुका होता है कि आप 4 घंटे की स्लीप से शरीर के लैक्टिक एसिड जो मसल में जमा हो जाते हैं वो निकाल नहीं पाते, तो दिन भर थकान होती है। दूसरी बात, आप अपना अगर आपका बहुत हेक्टिक शेड्यूल है तो 2 चीज़ ज़रूर निकालिए, योगा ज़रूर करिए। योगा से क्या होता है, आप जो भी प्राणायाम की पद्धतियां करते हैं उससे आपका पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम अप होता है, आपका लंग एक्सपेंड होता है, आपकी बॉडी स्ट्रेच होती है, तो वो कर लीजिए। जिम अगर आप दिन भर इतना भाग रहे हैं और फिर जिम करने जा रहे हैं तो और थकान अपने को करा रहे हैं। तो अगर आपकी लाइफस्टाइल हेक्टिक है, और दूसरी बात है इंटरमिटेंट ब्रेक, वो बहुत जरूरी। ऐसा मैं नहीं मान सकता कि आपकी मीटिंग दोपहर में 2 बजे शुरू हो और रात में 2 बजे तक चले, ऐसा नहीं होता है। हम क्या करते हैं, मीटिंग के बीच में अपने को रेस्ट देने के बजाय और टॉर्चर करते हैं। तो जब आपकी लाइफस्टाइल ऐसी हो तो जरूर बीच बीच में रेस्ट लें। जापान का आप, जापान में लोग काम करते हैं उनको हर 2 घंटे के बाद स्लीपिंग रेस्ट मिलती है, हम नहीं लेते। हमें 2 घंटे की छुट्टी मिली भी तो भी हम टहलने चले जाएंगे। सॉरी, तो आपकी उस लाइफस्टाइल को भी मॉडिफाई करके आप बिल्कुल स्वस्थ जीवन जी सकती हैं।
1: जी अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न है मेरा कि ऐसे हम लोग आजकल बहुत एक्टर्स क्रिकेटर्स फॉलो कर रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं कि वो सजेस्ट करते हैं कि मैं एक ही तरीके का खाना खाता हूँ 6 महीने, मेरी बॉडी उससे यूज्ड हो जाती है। बट क्या ये सही है, क्योंकि क्या आपको न्यूट्रिएंट्स अलग अलग मिल रहे हैं अगर आप सेम ही तरीके का खाना खा रहे हैं 6 महीने?
0: देखिए, सेम तरीके का खाना क्या होता है, जैसे हमारे गाँव होते थे, हमारे बचपन में हमें क्या मिलता था, हमें सब्जी मिलती थी, दाल मिलती थी, पराठा मिलता था, चावल मिलता था, दही मिलता था, अचार मिलता था, कभी कभी राजमा छोला मिल जाता था। तो अगर आप इसको सेम माने तो ओके है, बट आप कहें मैं राजमा और चावल ही 6 महीने खाऊंगा, मैं उसके फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ। इसीलिए बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर चीज में हर चीज होती है। हमारे जो, मैं हमेशा कहता हूँ, जो हमारी ट्रेडिशनल इंडियन डाइट थी जिसमें 8 कटोरा होते थे थाली में, उसमें छोटी सब्जी सब्जी वो सब अलग अलग होती थी,
1: थाली सिस्टम जो
0: थाली सिस्टम होता था, सब चीज होता था, तो उसमें आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते थे। तो कभी भी एक पर्टिकुलर डाइट के फेवर में मत जाएं। आप नॉर्थ की रहने वाली हैं तो साउथ के डॉट के फेरे में मत जाएं। वो आपका जो जेनेटिक मेकअप है, आपके पिछले 1000 सालों से आपके एंसेस्टर यही खाते आए हैं, आपके पेट के में दाल चावल है, और सीधे जाके आप डोसा खाने रोज लगेंगे तो आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगी। ये मैं बहुत क्लियर बात करता हूँ
1: जी।
0: आपका जो ट्रेडिशनल डाइट है उसको खाती रहिए आप
1: जी। तो डाइट पर मैं चाह रही थी बात करने की, और परिधि ने पूछ लिया और काफी विस्तार से आपने बताया कि डाइट कैसी होनी चाहिए। लाइफस्टाइल की भी बात हम कर रहे थे, तो जैसे आपने बताया कि खाकर सो जाएं, तो हम जनरली कहते हैं कि फौरन सोना नहीं चाहिए, तो ये कहीं विरोधाभास होता है, क्या किया जाए?
0: एक सिंपल सी बात याद रखिए, आप अच्छा खाइए, अच्छा सोइए, खाने के बाद इमीडिएट सोने जाएंगी, और आप दिक्कतें हचक के कभी मत खाइए। आपका पेट 1/3 खाली रहना चाहिए। खाने के तुरंत बाद पानी ना पिए। तो अगर आप हचक के खाएंगे तो जैसे लेटे ही आपके इसोफेगस में खाना आने लगेगा, तो थोड़ी से 10-15 मिनट बैठिए तब सोइए। एक कंसेप्ट, हचक के खाने का बंद करें, जब पेट आधा खाली हो तो छोड़ दें, फिर 2 घंटे बाद खा लें। कम कम खाइए, बार बार खाइए, अच्छा खाइए, अच्छा फैट खाइए, अच्छा कार्ब्स लीजिए, और सब चीज खाइए
1: जी।
0: ये है अच्छी डाइट का मतलब
1: जी। और आप एक बात हर बार जब आते हैं तो बोलते हैं खुश रहिए।
0: हाँ।
1: ये बात आप हर बार बोलते हैं, तो मैं वही रिपीट करना चाहूंगी कि
0: बिल्कुल
1: खुश रहिए, आपने ये बात बोली, इससे इम्यूनिटी बढ़ती है।
0: आप खुश रहेंगी तो आप हर काम अच्छा करेंगी, आप दुखी रहेंगी तो हर काम दुखी करेंगी
1: जी। बिल्कुल। और जैसे लाइफस्टाइल की भी हमने बात की, खान पान की, कुछ तनाव या गुस्सा या नींद ठीक से ना हो किसी,
0: बहुत खराब चीज है
1: जी।
0: तनाव, गुस्सा, नींद, आप गुस्सा करिए पर गुस्से से तनाव में मत आइए। मैं बहुत चिल्ला देता हूँ, वो गुस्सा इसलिए कि उसको सही करना है, बट गुस्से से आप अगर तनाव पे आ गई, तनाव से आपको नींद नहीं आई, तो आपकी पूरी लाइफस्टाइल खराब हो जाएगी।
1: तो वो भी इम्पैक्ट करता है।
0: आप खाना अच्छा नहीं खाएंगी, आप स्मोकिंग ज्यादा करेंगी, आप जंक फूड ज्यादा खाएंगी, आप चिड़चिड़ी होंगी, आपका काम नहीं होगा, आपका काम पेंडिंग हो जाएगा। ये सारी चीजें जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई। आप खुशी खुशी जाएंगी, अरे यार काम कर लेंगे, वहां जाके दोस्त से हंस के बात करेंगी, किसी ने काम नहीं किया चलो हो जाएगा, आप देखिएगा आपका वर्क एफिशिएंसी

0: ज्यादा हो जाएगी।
1: तो माइंडसेट भी
0: बिल्कुल बहुत जरूरी है, और ये स्वस्थ शरीर के लिए सबसे अच्छी बात हम कहते हैं अच्छे वचन, अच्छे विचार और अच्छा खाना।
1: तीन चीजें,
0: तीन चीज अगर आप फॉलो करेंगी तो आप शरीर के हर अंग को स्वस्थ कर सकती हैं।
1: तो हमारे पास समय अब ज्यादा बचा नहीं है, लेकिन हमारे पास बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं डॉक्टर साहब, जो धन्यवाद भी दे रहे हैं आपको। बहुत सारे उन्होंने प्रश्न ऐसे पूछे हैं जो बीमारियों का और दवाइयों का, पर क्योंकि हम आज खासतौर पर प्रिवेंशन पर बात कर रहे हैं तो मैं ले भी नहीं पाऊंगी क्योंकि समय नहीं है। लेकिन एक तो ऐसे आपके बारे में कुछ मैसेजेस हैं तो मैं लेना चाहूंगी। डॉक्टर राकेश यादव का जवाब देने का स्टाइल बहुत ही लाजवाब है, थैंक्स डॉक्टर साहब। प्रकाश जी लिख रहे हैं रोहिणी दिल्ली से, और साथ ही साथ एक प्रश्न थोड़ा अलग हटके नरदेव सिंह चौहान जी ने कोटद्वार उत्तराखंड से लिखा है कि आजकल डॉक्टर यादव का बहुत अच्छा लगता है हमें प्रोग्राम, बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज दिल की बात हो रही है तो क्या कारण है लोगों को दूसरों के प्रति दिल में जगह कम हो रही है, क्या यह भी दिल की बीमारी मानी जाए क्या?
0: बिल्कुल है, आप अपने दिल के दुख अगर दूसरों के दिल में नहीं डाल पा रहे हैं तो आप ही दुखी रहेंगे। आप अपने दुख दिल के प्यार को दूसरों के दिल में नहीं डाल पा रहे हैं तो प्यार फूलता फूलता फट जाएगा। ये बिल्कुल सच है,
1: ये सच है
0: कि दिल खुश तब रहेगा जब वो बांटा जाए किसी के साथ।
1: जी बिल्कुल। तो अब हमारे पास समय क्योंकि ज़्यादा नहीं है, हम धन्यवाद ही देना का समय बचा है, बहुत सारी और बातें हैं डॉक्टर साहब, आपको पुनः आना होगा, आपको आमंत्रित करेंगे क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हमारे श्रोताओं के छूट गए। तो मैं धन्यवाद दूंगी डॉक्टर राकेश यादव का, जो प्रोफेसर है कार्डियोलॉजी में, हेड है डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन एम्स न्यू दिल्ली में, कि आप समय निकाल कर यहां आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, और धन्यवाद देंगे परिधि मित्तल को कि आपने समय निकाला है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो युवाओं के मन में चलते हैं जो शायद हमें ध्यान न रहते, आपने वो डॉक्टर साहब से पूछे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इस कार्यक्रम को समाप्त करने की हमें आज्ञा दीजिए। आप अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो healthairdelhi@gmail.com पर हमें लिख सकते हैं। स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

एफएम रेनबो पर अब वक्त है मुख्य समाचारों का। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने नीट प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का सरकार का संकल्प दोहराया। संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित हुई। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित की गई। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल में दौरा कर डॉक्टरों के साथ बैठक की। उन्होंने नीट पेपर लीक होने के आरोपों को लेकर कल राजधानी में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान घायलों का हालचाल पूछा। पश्चिम बंगाल सरकार ने अगस्त में वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली मासिक आर्थिक सहायता को 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये करने की मंजूरी दी है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेगा के विपणन की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। सिक्किम के नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग ढहने से 11 लोगों की मौत हो गई है। इसमें कई लोग फंसे हुए हैं, बचाव कार्य जारी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश के कारण हुए भूस्खलन में आज 270 किलोमीटर लंबे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बाधित हो गया है। उत्तराखंड में बारिश और यात्रा मार्गों पर भूस्खलन की आशंका के कारण कल स्थगित की गई चार धाम यात्रा

सेन और आयुष शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु का मुकाबला कल पहले दौर में भारत की ही उन्नति हुड्डा से होगा। तो ये थे एफएम रेनबो पर अभी तक के मुख्य समाचार।

आकाशवाणी रेनबो की मैजिकल फ्रीक्वेंसी पर मैं प्रियंका मामगेन आप सभी का स्वागत करती हूँ अल्फा जेन प्रोग्राम में। आज करियर पाथवेज हमारे साथ रहता है और आज हम बात करेंगे करियर इन आयुर्वेद की। जी हाँ जनाब, आयुर्वेद की बात की जाए तो भारत की आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति हजारों साल पुरानी है और बहुत ही फेमस चिकित्सा पद्धति है, जिसका बोलबाला, जिसकी धाक आज भारत के साथ साथ विदेशों में भी धूम मचा रही है। अगर आप आयुर्वेद में, आयुर्वेद चिकित्सा में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आज का प्रोग्राम आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि इस करियर ऑप्शन को चुनकर आप भी पूरी दुनिया में धूम मचा सकते हैं आयुर्वेद के तौर पर, आयुर्वेद डॉक्टर के तौर पर, आयुर्वेद चिकित्सा से सबका इलाज करते हुए। और आज बेहद खास बात यह है कि आज हमारे साथ एक आयुर्वेद के एक्सपर्ट भी रहेंगे, डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा। उनसे भी जानने की हम पूरी कोशिश करेंगे कि कैसे उन्होंने अपना बहुत ही बेहतरीन करियर बनाया आयुर्वेद के क्षेत्र में और अब वो किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल अगर आप भी आयुर्वेद के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आज का प्रोग्राम बिल्कुल मत मिस कीजिएगा, क्योंकि धूम मचाने के लिए ये क्षेत्र बहुत ही शानदार है।

करियर पाथवेज, जी हाँ। और करियर पाथवेज के आज के सेगमेंट में हम लेकर आए हैं करियर इन आयुर्वेद आपके लिए। आयुर्वेद की बात की जाए तो आयुर्वेद संस्कृत भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। आयुर यानी जीवन और वेद मतलब ज्ञान। आयुर्वेद मतलब होता है जीवन का ज्ञान। आयुर्वेद एक ऐसा ज्ञान जिससे मनुष्य की शारीरिक और मानसिक बीमारियों का उपचार किया जाता है, जिससे मनुष्य लंबी आयु तक स्वस्थ जीवन जी सके। और आज करियर पाथवेज में हम बात कर रहे हैं करियर इन आयुर्वेद की, आयुर्वेद चिकित्सा की। आयुर्वेद में करियर बनाने के लिए आपका 12वीं में पास होना अनिवार्य है, 50% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम। और साथ ही साथ 12वीं में आपके पास पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इन सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन हो जाना चाहिए। ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेज में एडमिशन पाने के लिए आपको नीट एंट्रेंस एग्जाम की परीक्षा पास करनी होगी और इसके बाद काउंसलिंग सेशन रहता है और जो रैंकिंग आती है उसके आधार पर, उसके बेसिस पर भारत के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में जो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेजेस होते हैं वहां पर आपको एडमिशन मिलता है। आप एडमिशन उन कॉलेजेस में पा सकते हैं। इसी के साथ साथ भारत में कई सारे आयुर्वेद के प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जिनकी अपनी खुद की एंट्रेंस परीक्षा रहती है, एंट्रेंस एग्जाम रहता है, उसको क्लियर करके आप उन कॉलेजेस में भी एडमिशन पा सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात की जाए तो इनका क्राइटेरिया एक जैसा ही रहता है, नीट एंट्रेंस एग्जाम पास करना होता है। जबकि जो प्राइवेट कॉलेजेस रहते हैं उनका जो एडमिशन का क्राइटेरिया होता है वो अलग अलग रहता है और उसकी डिटेल्स उनकी वेबसाइट पर पूरी दी गई होती है। फिलहाल हम बात करेंगे उन सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस की जहां से आप करियर इन आयुर्वेदा में कोर्सेज कर सकते हैं। कई सारी बातें हैं आयुर्वेद के क्षेत्र की जो आज आपको इस प्रोग्राम में जानने को मिलेगी। जी हाँ, बस आपको क्या करना होगा, आपको हमारे साथ यूं ही अपना साथ बनाए रखना होगा।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
2: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
3: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
5: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: कहानी यहाँ सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: आकाशवाणी रेडियो रेनबो करियर पाथवेज प्रोग्राम आपके साथ, और आज हम बात कर रहे हैं करियर इन आयुर्वेद की। जब हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स की जो सबसे चिंता का कारण होता है ना, वो उनकी पढ़ाई नहीं होता बल्कि फ्यूचर में वो किस तरफ जाएंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन उनके सामने आता है। बोर्ड परीक्षाओं के बाद सबको लगता है कि किस ओर जाएं, और जब वो नीट की परीक्षा देते हैं तो उसके बाद उनका एम रहता है कि वो डॉक्टर बनेंगे। लेकिन नीट की परीक्षा पास करने के बाद भी कई सारे ऑप्शंस खुले रहते हैं, और आज उन्हीं में से एक की बात कर रहे हैं, वो है आयुर्वेद की। और आयुर्वेद अपने आप में बेस्ट ऑप्शंस है, जी हाँ। और अगर आयुर्वेद पद्धति की बात की जाए, चिकित्सा पद्धति की बात की जाए, तो दुनिया भर में इसको अपनी पहचान मिल चुकी है और भारत में आयुर्वेद का बोलबाला है। हमने आपसे शुरुआत में कहा था कि हम आज आपको एक एक्सपर्ट से मिलवाएंगे, आयुर्वेद एक्सपर्ट डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा जी से, जो विश्वविख्यात ख्याति प्राप्त डॉक्टर तो है ही, इसी के साथ साथ उन्होंने कई सारे अवार्ड्स भी जीते हैं, आयुर्वेद में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है, बहुत सारे अवार्ड्स उनके पास है, और वो एफएम रेनबो के एक्सपर्ट भी रह चुके हैं। हेल्पलाइन प्रोग्राम में कई बार उन्होंने कई सब्जेक्ट्स पर, जी हाँ, जो हमारे लिसनर्स हैं उनकी क्वेरीज को सॉल्व किया है आयुर्वेद से रिलेटेड। तो आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कैसे उन्होंने आयुर्वेद को अपने करियर के तौर पर चुना। हेलो,
1: हेलो, नमस्ते प्रियंका जी।
0: नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम रेनबो पर।
1: थैंक यू सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार।
0: जी सर, आप डॉक्टर इन आयुर्वेदा हैं और बहुत सारे आपने अवार्ड्स जीते हैं, इसी के साथ साथ आप आरएमएल हॉस्पिटल में भी चीफ आयुर्वेदिक ऑफिसर के रूप में कार्य।
1: मैं करेक्ट कर दूं, मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में होता था एज चीफ आयुर्वेदिक कंसल्टेंट फॉर 16 इयर्स, नॉट आरएमएल, आई वाज इन सर गंगाराम हॉस्पिटल। जी
0: ओके, दैट्स वंडरफुल, वो भी बहुत ख्याति प्राप्त हॉस्पिटल है दिल्ली का।
1: जी
0: सर, तो शुरुआत किस तरीके से हुई आपकी और किस तरीके से आपने चुना आयुर्वेदा को एज अ करियर?
1: बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है प्रियंका। जैसे आज के बच्चे नीट देते हैं, ऐसे मैंने हमारे समय पे भी एक एंट्रेंस टेस्ट होता था जिसको हम CPMT बोलते थे, कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट होता था, एंड उसमें ऊपर के लोग जो है MBBS पा जाते थे, फिर मेरिट में जो MBBS के नीचे नंबर जिनके आते थे वो BMS पा जाते थे। तो डेफिनेटली मेरा 3 मार्क्स पे प्रियंका रुका था, तो मुझे MBBS में सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो आई वॉज टू ऑप्ट आयुर्वेद। तो BMS में मैं मतलब च्वाइस से नहीं गया था, मुझे बस ये था कि डॉक्टर बनना है, और MBBS में नहीं हुआ ओके, तो फिर मैं आई एक्सेप्टेड एडमिशन इन BMS। लेकिन प्रियंका बड़े ही खुले मन से कह रहा हूँ कि उस समय जो मुझे थोड़े दिन के लिए दुख हुआ था कि मैं MBBS में नहीं गया, लेकिन आज मुझे लगता है कि ईश्वर भाई सो काइंड टू मी कि मुझे उसने MBBS में देके आयुर्वेद दिया। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो आज हमारी अर्निंग है, जो आज मेरा फेम है, जो आज मेरे सोशल एंगेजमेंट्स हैं, आज जो मेरा स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और एक व्यक्ति को लाइफ में जो कुछ चाहिए होता है वो मुझे मिला है जस्ट बिकॉज आई एम एन आयुर्वेदिक डॉक्टर। अगर मैं MBBS होता तो शायद मुझे इसका 1/4 मिलता। तो इसलिए हाँ, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैं दिल से बोल रहा हूँ कि आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे उस समय आयुर्वेद मिला, और मैंने फटाफट उसको जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो विद इन 1 ईयर मेरे को सही में आ गया कि भाई मैं मतलब अननोइंगली मैं जैसे समुद्र के अंदर कूद करके मेरे हाथ में एक रत्न लग गया है, और वो रत्न जो है फिर मैंने बस पकड़ लिया, और वो पकड़ने में मेरा डेडिकेशन भी था, मेरा डिसिप्लिन भी था, और मतलब मैंने फिर उसको कभी मैं फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ, फिर मैंने उसको यूटिलाइज किया, और आज ये कंडीशन है कि आप सोचिए कि आई एम फॉर्चुनेट टू हैव 1 daughter and 2 son। मेरे दोनों बेटे जो हैं मेरे साथ आयुर्वेद में मैंने जोड़े, नहीं तो आज अगर मैं मुझे अब प्रैक्टिस करते हुए प्रियंका इट वॉज मैं आई कंप्लीटेड माय MD इन ईयर 2002। तो BHU से मैंने MD किया, और आज 24 साल हो गए मुझे आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हुए। मैं आयुर्वेद की प्रैक्टिशनर का मतलब है आई राइट ओनली एंड ओनली आयुर्वेदिक मेडिसिन। तो अच्छा लगता है मुझे, हम सोसाइटी में आज एक स्पेशलिस्ट की तरह से काम कर रहे हैं, जो काम किसी का कहीं नहीं बन रहा होता है वो मेरे पास आके बन जाता है, भगवान बनाते हैं, भगवान धनवंतरी बनाते हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि सच्ची में मैं बोलूं तो आप अगर MBBS ऑप्ट करते हैं तो उसके बाद आप MD करेंगे, DM करेंगे, MCH करेंगे, देन यू विल बी सुपर स्पेशलिस्ट या स्पेशलिस्ट। लेकिन आयुर्वेद में तो अगर आप केवल BMS कर लेते हैं तभी आप स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, एटलीस्ट आप एक ऑप्शन देते हैं सोसाइटी को, बुखार कहीं से ठीक नहीं हो रहा, आप एक बड़े हॉस्पिटल से दूसरे बड़े एलोपैथिक हॉस्पिटल में मूव करते हैं, तीसरे में मूव करते हैं, परेशान होते हैं, आप आयुर्वेद में आइए, हो सकता है कि आयुर्वेद से आप ठीक कर दें। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैं जोर शोर से आपके माध्यम से FM रेनबो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, फटाफट जाके BMS में एडमिशन ले लो, बहुत अच्छा है,
0: गोल्डन अपॉर्चुनिटी
1: है अनडाउटेबली, कहीं दूर दूर तक कोई डाउट नहीं है कि अगर सी प्रियंका किसी को हम सब लोग जब कोई कैरियर चूज करते हैं तो हमारे दिमाग में 4-5 बातें होती हैं यार, अच्छी हमारी इनकम होनी चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा अगर उसी इनकम के साथ में हम थोड़ा सा फेमस भी हो जाएं, ठीक है, अच्छा हमारे सोशल एंगेजमेंट रहे, लोग हमें मतलब हम बाहर निकले तो राम राम करें, क्योंकि आपने देखा बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, दे आर अर्निंग टू मच, बट बाहर लोग जानते ही नहीं है उनको, साइंटिस्ट है उनको बाहर लोग जानते नहीं है, लेकिन डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप जब बाहर निकलते हैं तो मतलब पैदल चलना मुश्किल हो जाता है, 10 लोग लिफ्ट देख ले, आपका मन होता है थोड़ा सा पैदल चल रहे, लेकिन 10 लोग लिफ्ट देख ले, अपनी गाड़ी रोकते हैं, डॉक्टर साहब आ जाओ, तो सोशल एंगेजमेंट एंड देन आयुर्वेदा इज द ओनली साइंस जो आपको स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड रखता है, वो मन की बात करता है, वो आत्मा की बात करता है, वो सत्व रज तम की बात करता है, सच ए वंडरफुल स्ट्रीम आई थिंक आयुर्वेदा इज, कि कुछ भी नहीं सोचना, द ओनली थिंग इज कि आप इसे जब एक्सेप्ट करें तो बहुत दिल से एक्सेप्ट करें, फिर ये सब कुछ आपको देगा जो आपको चाहिए, सब कुछ, बल्कि आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा।
0: जी बिल्कुल सर, आप स्टूडेंट के लिए एग्जांपल हैं सर, बिकॉज कई बार क्या होता है नीट क्लियर करने के बाद जब उनको अपनी फील्ड में नहीं मिलता है डिजायर्ड फील्ड रहती है तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं या होपलेस हो जाते हैं, लेकिन आपने जिस तरीके से बताया अपने करियर के बारे में और अपनी अचीवमेंट्स के बारे में, कितने हाई पॉइंट तक आप पहुंच चुके हैं इस वक्त, तो उससे लगता है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको हताश होने की जरूरत नहीं।
1: प्रियंका मैं एक चीज और कहता हूँ आपकी बात में, एडिशन करता हूँ कि देखिए व्हेन वी टॉक अबाउट हेल्थ तो देयर आर टू डायमेंशन, एक होता है कि हमें स्वस्थ से स्वास्थ्य रखना, एक स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा कि कैसे हम हेल्दी बने रहें, नंबर दो पे आता है आतुरस्य विकार प्रश्न चेक, अगर आप बीमार पड़ जाएं तो कैसे अपने को ठीक करें। आप जानते हैं कि आज अगर आप कहीं भी बोलते हैं कि साहब मैं आपको वो डाइट सिखाता हूँ, वो लाइफस्टाइल सिखाता हूँ जो आपको बीमार ना पड़ने दे, तो यू कैन चार्ज मोर देन व्हाट ए ट्रीटिंग डॉक्टर इज चार्जिंग। और ये चीज जो है, जो खान पान को लेके, लाइफ स्टाइल को लेके, हर चीज को लेके, पानी कैसे पीना है, दूध कैसे पीना है, दालें कैसे खानी है, आपको दही के बारे में, ये सारा कुछ अगर आपको जानना है, जो आज पूरी सोसाइटी जानना चाह रही है, बिकॉज एवरीवन इज फाइटिंग फॉर हेल्थ, तो वो वास्तव में अगर कोई दे सकता है तो वो आयुर्वेदिक डॉक्टर दे सकता है, बिकॉज आयुर्वेदा इज द ओनली लिटरेचर इन दिस वर्ल्ड जो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, बहुत ही कंप्लीट तरीके से खाने पीने के बारे में, लाइफ स्टाइल के बारे में पूरा हमको जो है बताता है।
0: जी बिल्कुल, आयुर्वेदा से बेहतर कुछ नहीं। तो सर चलते चलते आप स्टूडेंट से क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें आयुर्वेदिक क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में करियर चुनना चाहिए तो किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए और कैसे आप उन्हें मोटिवेट करेंगे इस क्षेत्र?
1: देखिए मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि क्यों भीड़ में खोना चाहते हो, आप अकेले में आओ, बिल्कुल ग्राउंड खाली पड़ा है, अभी स्टिल बहुत कम जो मेरी इस बात को किसी भी शहर से सुन रहे हैं रेनबो के माध्यम से, मैं कहता हूं कि सोचिए आपके अपने शहर में मेडिसिन में कितने डॉक्टर साहब को दिखेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट कितने दिखेंगे, ऑर्थोपेडिशियन कितने दिखेंगे, लेकिन ईमानदारी से देखिए कि आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करने वाले, प्योर आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करने वाले कितने होंगे, तो शायद आप एक भी नाम ना बता सकें। तो आप भीड़ में क्यों खोना चाहते हैं, आप पहले BMS कीजिए पूरे डेडिकेशन के साथ में, फिर अपने अपने शहर में एक ऑप्शन बनके, स्पेशलिस्ट बनके, बड़ा सा बोर्ड लगा के कि आई एम आयुर्वेदिक डॉक्टर, यू प्लीज कम टू मी फॉर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, और आप देखिए ईश्वर आपके साथ देंगे, धनवंतरी आपका साथ देंगे, दिन दुनी रात चौगुनी आपकी कृति बढ़ेगी, आपका धन बढ़ेगा, आपका सब कुछ बढ़ेगा। मैं तो कहता हूँ चुप करके घुस जाओ एकदम से आयुर्वेद में, विद डेडिकेशन, नॉट विद फ्रस्ट्रेशन, विद डेडिकेशन एंड हैप्पीली।
0: बात है आपकी, इन बातों को सुन के तो वाकई बिल्कुल जोश से भर चुके हैं। थैंक यू सो वेरी मच सर, आप हमारे साथ जुड़े और इतने अच्छे तरीके से आपने इस सब्जेक्ट को एक्सप्लेन
1: किया। बहुत बहुत शुभकामनाएं सब बच्चों को, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और FM रेनबो को, प्रियंका जी को धन्यवाद, हमें इस तरह से आप बुलाते रहते हैं, मौका देते हैं अपनी बात रखने का, बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। थैंक यू सो वेरी मच जी, नमस्कार जी। हाँ जनाब, अगर आप भी करियर इन आयुर्वेदा में एंटर करना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं आयुर्वेदा के क्षेत्र में, तो कई सारे जॉब ऑप्शंस हैं, कई सारे कोर्सेज ऑप्शंस हैं जो आपके सामने हैं, बस आपको एक सही सोच के साथ इस क्षेत्र में आना है और फिर आगे बढ़ते चले जाना है।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है,
3: ठीक है।
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो आधार कार्ड है ना इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

0: कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: अब होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग एफएम रेनबो दिल्ली पर।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
4: आकाशवाणी रेनबो करियर पाथवेज, करियर इन आयुर्वेद। और आयुर्वेद की बात हो तो भारत का गौरव है आयुर्वेद। हजारों सालों से स्वस्थ जीवन की गारंटी देता आयुर्वेद विज्ञान, और आज आयुर्वेद विज्ञान भारत के साथ साथ विदेशों में भी स्वस्थ जीवन के लिए जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, बन रहा है। हर साल लाखों विदेशी आयुर्वेद विज्ञान से स्वास्थ्य लाभ पाने के लिए भारत आते हैं, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी सभी तरह के मानसिक और शारीरिक बीमारियों के सफल इलाज के लिए आयुर्वेद के महत्व को स्वीकारा है। और आज करियर पाथवेज में करियर इन आयुर्वेदा हमारे साथ कई सारे कोर्सेज जो आप कर सकते हैं। अगर ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेज की बात की जाए तो बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी है जो 5.5 साल का कोर्स है, बैचलर ऑफ सिद्ध मेडिसिन एंड सर्जरी ये भी 5.5 साल का कोर्स है। पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन आयुर्वेद, मास्टर ऑफ सर्जरी इन आयुर्वेद, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन आयुर्वेद फार्मेसी है। इसी के साथ साथ आप डायरेक्टोरल डिग्री की बात की जाए तो डायरेक्टोरल डिग्री के कोर्सेज भी कर सकते हैं जिसमें एमफिल और पीएचडी आते हैं। क्या कुछ बन सकते हैं आप और किस क्षेत्र में जा सकते हैं? तो आप आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं इन आयुर्वेदा, साइंटिस्ट बन सकते हैं, आयुर्वेदिक साइंटिस्ट बन सकते हैं, रिसर्च ऑफिसर ऑफ आयुर्वेदा बन सकते हैं, पंचकर्म सेंटर में सुपरवाइजर के तौर पर भी कार्य कर सकते हैं, आयुर्वेद फिजिशियन बन सकते हैं, कंसल्टेंट बन सकते हैं, फार्मासिस्ट बन सकते हैं, आयुर्वेद थेरेपिस्ट बन सकते हैं, जी हाँ, और आयुर्वेद पब्लिकेशन ऑफिसर भी बन सकते हैं। भारत में कई सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जहां से आप आयुर्वेद के क्षेत्र में कई सारे कोर्सेज कर सकते हैं। और इसी के साथ आगे बढ़ा जाए तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर राजस्थान, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी उत्तर प्रदेश, इंस्टीट्यूट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद जामनगर गुजरात में ये है, और सेंट्रल आयुर्वेदिक कॉलेज नागपुर में है महाराष्ट्र में। इसके साथ साथ डॉक्टर एन आर शास्त्री गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज गुवाहाटी असम, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना बिहार में, श्रीकृष्ण गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र हरियाणा में है, राजीव गांधी गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक कॉलेज कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है, साथ ही गवर्नमेंट धनवंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज और एंड हॉस्पिटल उज्जैन एमपी में भी है। इसके साथ साथ कई सारे और कॉलेजेस हैं जिन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं नीट की परीक्षा पास करने के बाद। तो आयुर्वेद के क्षेत्र में करियर बहुत शानदार है, बस आपको सोचना है और ठानते हुए आगे चलना है कि आपको इसी क्षेत्र में ऊंची से ऊंची ऊंचाइयों को छूना है। इसी के साथ मैं प्रियंका मामगेन लेती हूँ विदा। अगला प्रोग्राम सिटी लाइट्स आपके साथ रहेंगी सुषमा शर्मा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों में रक्षा करने के लिए सरकार के संकल्प को दोहराया। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुबह 11 बजे प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की तो विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया। हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी ने लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश ने सदन के कामकाज को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही भी कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज संसद भवन परिसर में श्री पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा सहित सभी क्षेत्रों में सुधारों की आवश्यकता पर लगातार बल दिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने कहा है कि देश में नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता 2014 में 76 गीगावाट से बढ़कर इस वर्ष 30 जून तक 288 गीगावाट से अधिक हो गई है। आज राज्यसभा में लिखित उत्तर में श्री नाइक ने कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 से वित्त वर्ष 2025-26 तक देश के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में लगभग $46 अरब का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया गया है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों और 19 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों के जरिए मादक पदार्थों पर रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत किया है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ड्रग तस्करी और इसके दुरुपयोग से निपटने के लिए पिछले महीने नारकोटिक्स कंट्रोल पर विजन डॉक्यूमेंट 2026 से 2029 जारी किया गया था। सिक्किम में

0: खिलाफ कील लगे डंडों के इस्तेमाल करने के दावों को भी खारिज किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तंत्र जांच इकाई ने कहा कि ये सभी दावे झूठे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोप्जो में राष्ट्रपति गोर्डाना सिंजिवास्को दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं।
1: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
0: पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर लगातार 10वें दिन हमले जारी रहने से हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहे एक टैंकर पर हमला किया तो वहीं अमेरिका ने ईरान के भीतर तक हवाई हमले किए। इस बीच ईरान के एक अधिकारी ने आज पाकिस्तान में मध्यस्थों के साथ बैठक शुरू की। ईरान और अमेरिका के बीच अंतरिम समझौते को बचाने के राजनयिक प्रयास भी लगातार जारी हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आज जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज का पायलट चरण शुरू किया है। ये देश भर में जमीनी स्तर के डिजिटल क्रिएटर्स की पहचानने, उन्हें आगे बढ़ाने और बढ़ावा देने के लिए एक पहल है। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत की एचएस प्रणॉय और देविका सिहाग का अभियान आज पहले ही दौर में समाप्त हो गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ খন্তেক পাছতে হিন্দী আৰু ইংৰাজীত বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই মুনীশ শর্মা। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुबह 11 बजे प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की तो विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया। हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी ने लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश ने सदन के कामकाज को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। वैश्विक चुनौतियों और भू राजनैतिक उथल पुथल के बावजूद भारत का वस्त्र और परिधान निर्यात 2025-26 में 3,25,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा, जिसमें 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पास कर दिया। अब यह विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और मंजूरी मिलते ही मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगा। यूसीसी के मुख्य प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह अब मान्य नहीं होगा, तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी तथा महिला और पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दे दिया है। मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया है। गीतांजलि ने रविवार को उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें न्यायालय ने सरकारी अस्पताल में चल रहे उनके इलाज में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे

0: ইমান পৰি শ্ৰোতাসকলে কংকনা দাসৰ কণ্ঠত লোকগীত শুনিলে। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। খন্তেক পাছতে সংস্কৃতত বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: ইয়ম আকাশবাণী সম্প্ৰতি বাৰ্তাঃ শ্ৰূয়ন্তাম প্ৰৱাচিকা নিধিঃ ঝাঃ। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना भावि परीक्षासु प्रश्नपत्र गोप्यता भंगं निवारयितुं समन्वित प्रयासानां कृते आह्वानं विहितम्। नीट प्रश्नपत्र प्रकटन दोषिणां विरुद्धं कठोर कार्याचरणाय प्रशासनस्य दृढ संकल्पः पुनरावर्तितः। विपक्षस्य विरोध कारणात् संसदः उभयोः सदनयोः कार्याचरणम् अद्य स्थगितम्। सिक्किमस्य नामची मण्डले निर्माणाधीनस्य सुरंगस्य निपातेन एकादश जनाः मृताः, बहवः सम्प्रति अन्तः निरुद्धाः सन्ति। आपतोद्धार कार्यं द्रुतगत्या प्रवर्तते। भारतोत्तर मैसोडेनिया देशौ व्यापार विस्ताराय तथा प्रमुख क्षेत्रेषु सहयोगं दृढीकर्तुं सहमतौ अभवताम्। राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मुः इत्यनया स्कोप्ये नगरे समकक्षैः सह द्विपक्षीय वार्ता च विहिता, अपि च वाणिज्यिक पोतं प्रति संजातेन प्रहारेण चतुर्णां भारतीय नागरिकाणां निधनस्य प्रकरणे भारतेन रूस देशस्य राजदूतः आहूतः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। संसद भवनस्य जीएमसी बालयोगी प्रेक्षागृहे अद्य मंगल मिलन इत्याख्यः एनडीए संसदीय दलस्य उपवेशनम् आयोजितम्। अस्मिन् उपवेशने गठबंधन सहयोगिभिः भारतस्य सुदीर्घकालं यावत् सेवारत निर्वाचित प्रधानमन्त्रित्वस्य पदालंकरणाय प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः अभिनन्दन प्रस्तावः पारितः। वार्ताहरैः सह सम्भाषमाणः संसदीय कार्यमन्त्री किरेन रिजिजुः प्रत्यपादयत् यत् उपवेशनावधौ प्रधानमन्त्रिणा मोदिना भविष्ये देशे सर्वासां परीक्षाणां प्रश्नपत्र प्रकटनरोधाय रोधनाय सर्वैः हितधारकैः सह समन्वित प्रयासानां समाह्वानं व्यधायि। सः प्रावोचत् यत् प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणेषु लिप्तानां जनानाम् उपरि दृढ कार्याचरणं सहैव देशस्य यूनां हितरक्षणाय सर्वकारस्य प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रिणा पुनरावर्तिता। प्रधानमन्त्रिणा न्यगद्यत यत् साम्प्रतिके नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणे संलिप्ताः सर्वे अभियुक्ताः गृहीताः।
2: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया, और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें।
1: श्री रिजिजुः प्रोक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणा मोदिना विभिन्न देशैः सह भारतस्य मुक्त व्यापार सन्धेः विषये अपि भाषितम्। उपवेशने प्रधानमन्त्रिणा मोदिना स्पष्टीकृतं यत् प्रत्येकेषु मुक्तव्यापारसन्धिषु भारतीयकृषकाणां हिताय सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदीयते। संसद्भवनस्य प्रावृट् सत्रस्य कार्याचरणमद्य नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणे विपक्षिसदस्यानां निरन्तर कोलाहलेन आगामि दिनं यावत् स्थगितम्। विपक्षस्य अवरोधत्वात् उभयोः सदनयोः कार्याचरणं यावत् तावत् वारत्रयम् अपवारितम्। प्रातः एकादशवादने यदा लोकसभायाः क्रियाकलापाः आरब्धाः तदा अध्यक्षेण ओम बिरला वर्येण प्रश्नकालस्य सञ्चालनाय बहुधा प्रयासाः विहिताः, किन्तु विपक्षिसदस्याः नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणमादाय विरोधं प्रादर्शयन् अध्यक्षः सदनस्य संचालनाय समेभ्यः सहयोगम् अयाचत्, परञ्च अविरत प्रतिरोध कारणात् लोकसभा मध्याह्न द्वादश वादनं यावत् स्थगितम्। मध्याह्ने पुनः समवेतायां लोकसभायां संसदीय समितीनां निर्वाचन प्रस्तावाः गृहीताः। पीठासीना संध्यारायः अवदत् यत् शून्यकालः सदस्यानां कृते भवति, समग्रः देशः अस्य कार्याचरणस्य साक्षी वर्तते। तथापि पट्टिकाः गृहीत्वा सदस्याः सभामध्ये आगत्य विरोधोद्घोषान् अकुर्वन्, येन कार्याचरणं द्विवादनं यावत् बाधितम्। द्विवादने पीठासीनः दिलीप सैकिया इत्यसावपि सदन संचालनाय पुनः आग्रहम् अकरोत्, किन्तु कोलाहलत्वात् पीठेन लोकसभा श्वः प्रातः एकादशवादनं यावत् स्थगिता। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। सिक्किम राज्यस्य नामची मण्डलस्य समर हुंग क्षेत्रे एनएचपीसी तीस्ता चरण षट् जलविद्युत परियोजनायाः निर्माणाधीने सुरंगे अवरुद्धान् जनान् सुरक्षिततया निष्कासयितुं तीव्रोद्धार कार्यम् अहोरात्रं प्रवर्तते। उद्धारदलेन सम्प्रति यावत् एकादश मृतात्मानां देहाः समुद्धृताः सन्ति। आशंक्यते यत् ह्यः भूस्खलनकारणात् ध्वस्ते सुरंगे न्यूनतमं 25 श्रमिकाः अद्यापि अवरुद्धाः सन्ति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सिक्किम राज्यस्य मुख्यमंत्रिणा प्रेम सिंह तमांगोले इत्यनेन सह दूरभाषेण वार्तां विधाय सहायतां प्रदातुं उक्तवान्। सम्प्रति नामची मण्डल प्रशासनं एनएचपीसी अधिकारिभिः एसडीआरएफ एनडीआरएफ सिक्किम आरक्षिबलेन अग्निशमन आपत्कालीन सेवाभिः तथा स्वास्थ्य विभागेन सह समन्वयं कृत्वा निरन्तरं आपतोद्धार कार्यं संचालयति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य अवोचत् यत् भारत उत्तर मैसेडोनिया देशौ लोकतांत्रिक मूल्यानां परस्परादरस्य आधारेण च स्वकीय प्रगाढ मैत्री संबंधं पुनः सुदृढं अकुरुताम्। स्कोपिये नगरे उत्तर मैसेडोनिया देशस्य राष्ट्रपतिना गोडोर्ना सिल्यानोवस्का दावाकोवा इत्यनया सह द्विपक्षीय वार्तानन्तरं वार्ताहरैः सह भाषमाणा राष्ट्रपतिः मुर्मू प्रत्यपादयत् यत् उभौ पक्षौ द्विपक्षीय सहयोगस्य समग्र व्याप्तिं समालोकितवन्तौ, सहैव क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु विचार विनिमयं कृतवन्तौ।
3: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
1: अस्य मासस्य 21 दिनांके एमवी गोल्डन लियो इति वाणिज्यिक पोते दुरापन्नस्य घातकाक्रमणस्य पृष्ठभूमौ भारतेन अद्य रूस देशस्य कूटनीतिकाधिकारी व्लादिमीर लादानोव इत्यसौ वैदेशिक कार्य मंत्रालयम् आहूतः। अस्मिन् दुःखादाक्रमणे चत्वारः भारतीय नागरिकाः स्वप्राणान् अत्यजन्। अस्य भीषण प्रहारस्य निन्दां कुर्वन् स्वस्य गभीरां चिन्तां च प्रकटयन् वैदेशिक कार्य मन्त्रालयः स्पष्टीकृतवान् यत् एतादृशानि आक्रमणानि अन्ताराष्ट्रिय सामुद्रिक व्यापारस्य सुरक्षां स्थिरतां च क्षतिं नयन्ति। उत्तराखण्ड राज्ये अश्रान्तं जलवृष्टेः तथा यात्रा मार्गेषु संभाव्य भूस्खलन संकटस्य कारणात् अवधानतया ह्यः स्थगिता सुप्रसिद्धा चारधाम यात्रा अद्य पुनः समारब्धा। इयं पावनी यात्रा मण्डल प्रशासन आरक्षीय बलेन अथ अन्याधिकारी वर्गैः सह समन्वयं विधाय सुचारु रूपेण संचाल्यते। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां श्वः महिला एकल वर्गस्य भारतस्य अग्रगण्य क्रीडिका पीवी सिंधुः स्वस्य देशस्यैव उन्नति हुड्डां सम्मुखी करिष्यति इति वार्ताः।
0: বাতৰিৰ পাছতে উভতি আহিছো যুৱবাণীৰ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ। আমাৰ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰিত হৈছে মিডিয়ামৰ 290.9 মিটাৰ, 1035 কিলোহাৰ্টছ আৰু ডিএনএফ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ 1026 কিলোহাৰ্টছত আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগ জ্যোতিষপুৰ যোগে। প্ৰিয় শ্ৰোতা, এতিয়া আগবঢ়াইছো শতাব্দী শৰ্মাৰ কণ্ঠত আধুনিক গীত।

0: कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। कहा, सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रही है। भारत और उत्तरी मैसेडोनिया स्कोपिये में राष्ट्रपति स्तरीय वार्ता के बाद व्यापार बढ़ाने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर सहमत। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया। अमरीका और ईरान के लगातार 10वें दिन एक दूसरे पर हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ा। और भारत ने अगले महीने से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्य टीम की घोषणा की। हरमनप्रीत सिंह होंगे टीम के कप्तान। और अब समाचार विस्तार से। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉ जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
2: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
1: इस बीच लोक कल्याण मार्ग के पास विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और विपक्षी दलों के अन्य सदस्यों को हिरासत में ले लिया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
4: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिलकर के करें।
1: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

0: मंत्री चिराग पासवान ने आज कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। संसद भवन परिसर में श्री पासवान ने विपक्ष से रचनात्मक सुझाव देने और सार्थक बातचीत में भाग लेने का आग्रह भी किया।
1: प्राइम मिनिस्टर इज वेरी क्लियर कि हमें रिफॉर्म्स करने होंगे। हर मंत्रालय को कहा जा रहा है, इंक्लूडिंग शिक्षा मंत्रालय, कि आप रिफॉर्म्स लाइए। आज की परिस्थिति के हिसाब से हम लोगों को व्यवस्था निर्माण करने की जरूरत है। आप सुझाव देंगे, हम करेंगे रिफॉर्म्स। कल से संवाद के दरवाजे खुले हैं।
0: वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि सरकार ने बदलती वैश्विक भू राजनैतिक और आर्थिक स्थितियों के बीच निर्यात बाजारों में विविधता लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री प्रसाद ने कहा कि इनमें मुक्त व्यापार समझौते और व्यापक आर्थिक साझेदारी तथा सहयोग समझौतों का विस्तार करना और प्राथमिकता वाले बाजार पहुंच हासिल करने के लिए प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और क्षेत्रों के साथ व्यापार वार्ता करना शामिल है। भारत का वस्त्र और परिधान निर्यात 2025-26 में 3,25,000 करोड़ रूपये से अधिक रहा, जिसमें 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित कर दिया। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन सदन में हंगामे और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच यूसीसी विधेयक पारित हुआ। एक रिपोर्ट।
2: कांग्रेस विधायकों ने बिल को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की, लेकिन सरकार ने ये मांग खारिज कर दी। इसके बाद विपक्षी विधायक सदन के बीच में आकर नारेबाजी करने लगे और कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी, लेकिन सरकार ने बहुमत के बल पर बिल को पास करा लिया। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगा। यूसीसी के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा, तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिविंग रिलेशनशिप में एक महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने नामची जिले के समरदुंग में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम NHPC की घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। घटनास्थल से अब तक 12 शव निकाले जा चुके हैं और 13 अन्य लोग अभी भी सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के मुख्यमंत्री से बात करके हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।
3: सिक्किम के गवर्नर ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ओले ने आज दुर्घटना वाली जगह का दौरा किया और हालत का जायजा लिया। श्री गोले ने उम्मीद जताई कि एक उच्च स्तरीय जांच से इस दुखद घटना से जुड़ी सभी बातें सामने आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि सिक्किम सरकार मृतकों के परिवार को मुआवजा देगी। इस बीच सिक्किम के मुख्य सचिव ने भी आज नामची में अलग अलग विभागों के साथ समीक्षा बैठक की, ताकि चल रहे बचाव अभियान में तेजी लाई जा सके। इस बीच NDRF की और एक टीम नए उपकरणों के साथ बचाव अभियान में लगे हुए है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया। सरकार ने दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले में विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस के पैलेट गन का इस्तेमाल करने की सोशल मीडिया की खबरों को गलत बताया है। सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा कील लगे डंडों के इस्तेमाल करने के दावों को भी खारिज कर दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर प्रतिबंधित नक्सली संगठन के कट्टर माओवादी अजय महतो की पत्नी अनीता किस्कू उर्फ बबीता महतो ने आज गिरिडीह पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि उसे झारखंड सरकार की नई दिशा एक नई पहल पुनर्वास नीति के तहत 3 लाख रुपए की सहायता और अन्य पुनर्वास सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपियो में राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों ही देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं।
4: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने IT, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
0: पश्चिम एशिया में ईरान और अमरीका के एक दूसरे पर लगातार 10वें दिन हमले जारी रहने से होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार बुशहर प्रांत को भी निशाना बनाया गया है। एक रिपोर्ट।
5: ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजर रहे एक टैंकर पर हमला किया, वहीं अमरीका ने ईरान के भीतर तक हवाई हमले किए। इस बीच ईरान के एक अधिकारी ने आज पाकिस्तान में मध्यस्थों के साथ बैठकें शुरू की। ईरान और अमरीका के बीच अंतरिम समझौते को बचाने के राजनयिक प्रयास भी लगातार जारी है। इससे पहले अमरीका ने हमलों में दक्षिण पश्चिमी ईरान के होर्मुज शहर को निशाना बनाया। जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान की ओर से नए हमलों की जानकारी दी है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC ने आज कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर POJK में बंद और चक्का जाम जारी है। JAAC ने आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के लिए न्याय और अपनी मांगे मनवाने के लिए 23 जुलाई को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में गुजरात, पूर्वी राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, उत्तराखंड, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में अगले 3 दिनों में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी कल तक आंधी तूफान की संभावना है। दिल्ली में कल बादल छाये रहने का अनुमान है। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। मोहित एचएस और सूरज करकेरा गोलकीपर के रूप में हैं। हरमनप्रीत सिंह, अमित रोहित, जुगराज सिंह, सुमित मनप्रीत और हार्दिक सिंह भी इस टीम का हिस्सा हैं। उधर कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में विश्व स्क्वॉश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में अनाहत सिंह, सानवी कलंकी, अनिका दुबे और रुद्र सिंह ने अगले दौर में जगह बना ली है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिनभर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। कहा, सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रही है। भारत और उत्तरी मैसेडोनिया स्कोपिये में राष्ट्रपति स्तरीय वार्ता के बाद व्यापार बढ़ाने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत करने पर सहमत। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया और भारत ने अगले महीने से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्य टीम की घोषणा की। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: गुड इवनिंग।